0: है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
1: त्योहारों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच आरक्षित विशेष रेलगाड़ियों के दो फेरे चलाएगा। रेल संख्या 04083 नई दिल्ली कटरा 9 और 16 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 3 बजे कटरा पहुंचेगी। वापसी की रेल 04084 कटरा नई दिल्ली 10 और 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कटरा से रवाना होगी और उसी दिन रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। कई दशकों के फिल्मी करियर में उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में अपनी पहचान बनाई। 1978 में आई फिल्म गबन से नाना पाटेकर ने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को और अग्निसाक्षी में उनके नकारात्मक किरदार को लोगों ने काफी सराहा।
2: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवंगत नेता को निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पेचिंग में मानुष शाह और दिया चिताले ने इतिहास रचते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress, IMC, at Yashobhoomi in New Delhi in a short while. The event showcases India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation, while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. The four-day event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. Chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, the meeting will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a 5-pronged plan for the next set of reforms to the GST system. These reforms are aimed at automating and easing a lot of the current administrative bottlenecks in the GST system and reducing the compliance burden, especially for small businesses. Veteran actor Nana Patekar passed away at the age of 75 after suffering a severe cardiac arrest at his residence in Goa this morning. Patekar was reportedly found unconscious at his home and was immediately rushed to a nearby hospital. As per preliminary analysis, doctors attempted to revive him for nearly 45 minutes, but he did not respond to treatment. Patekar, one of India's most acclaimed actors, was known for his performances across Hindi and Marathi cinema, with a career spanning several decades. He earned widespread recognition for films such as Parinda, Krantiveer, Ab Tak Chappan and Welcome. Prime Minister Narendra Modi today expressed grief over the demise of the renowned actor of Hindi and Marathi cinema, Nana Patekar. In a social media post, the Prime Minister said that Mr. Patekar brought remarkable versatility and creativity to every role and gave characters that will be remembered for generations. The nation is celebrating the 94th anniversary of Indian Air Force today. Established on 8th of October in 1932, this momentous occasion marked the beginning of a vision for air power that would shape the nation's defence for decades.

0: decades to come. On this occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah have extended greetings to all air warriors, veterans and their families. India has joined the United States and 13 other economies in signing a joint ministerial statement calling for measures to address structural excess capacity and production and curb non-market policies that distort global markets. The joint ministerial statement signed by the 15 participating economies was released by the Office of the U.S. Trade Representative last night following discussions among G20 trade ministers in Milwaukee, Wisconsin on September 30th and October 1st, 2026. Government has sanctioned 993.64 crore rupees for the development of National Highway 10 between Rangpo and Ranipur in Sikkim. According to Union Minister for Road Transport and Highways, Nitin Gadkari, the project will upgrade the corridor into a two-lane highway with paved shoulders, with major engineering works planned to improve safety and resilience in the challenging Himalayan terrain. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim today. In table tennis, Indian paddlers Manush Shah and Diya Chitale created history by becoming the first Indian mixed doubles pair to reach the semi-finals of a WTT Grand Smash after beating Romania's Edward Inescu and Bernadette Soz 3-0 at the China Smash in Beijing yesterday. The fifth-seeded Indian duo won the quarterfinal 11-9, 13-11, 11-3. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में
2: अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन
3: पर्पस एम्बिशन एंड डायरेक्शन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ विकसित भारत इज ऑल्सो विजन ऑफ अ नेशन विच इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड कनेक्टिविटी क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एट स्केल एम्पावरिंग एवरी सिटीजन. It is also a vision, ladies and gentlemen, where technologies, innovations and products created here travel across the country, reaching out to the world. And it is this vision of Prime Minister Modi that finds its strongest expression in the theme of IMC 2026, Scale Without Boundaries. And this becomes the basis of our conversations, the basis of our digital future.
4: पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवॉकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपनी स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचनाओं के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के यशोभूमि पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर में वे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
5: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम

0: चार नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
2: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच वॉयस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि उसने रियाद के उत्तर में एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया और यमन की राजधानी सना में उस प्रक्षेपण स्थल को नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल सऊदी राजधानी को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इस बीच हूती संगठन ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिम तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेव जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 नए क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वो पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। अधिकारियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों हमलों को बेहतर ढंग से रोकने के लिए अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणालियों और गोला बारूद की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। इससे पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अमरीका वार्ताकारों ने अक्टूबर के अंत तक तकनीकी स्तर पर यूक्रेन और रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। यूक्रेन ने इसमें भाग लेने की तत्परता व्यक्त की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात आपदजान में कोटे दी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिराहिमा ओतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आपदजान में हुई बैठक डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर ने एकीकृत हवाई अभियानों की निर्णायक क्षमता को फिर से स्थापित किया।
3: परफॉर्मेंस इन ऑपरेशन सिंदूर,
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
1: चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मोचोवा का सामना निकोला बार्तुनकोवा से और मीरा एंड्रीवा का मैच एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। उधर मानुष शाह और दिया चिताले ने इतिहास रचते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मानुष और दिया सेमीफाइनल

0: में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कल उन्होंने रोमानिया की जोड़ी को हराया। आईसीसी ने ताजा क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर करियर की सर्वश्रेष्ठ सातवीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं, जबकि एक दिवसीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। टी20 बल्लेबाजों में ईशान किशन पहले, अभिषेक शर्मा दूसरे, जबकि तिलक वर्मा दसवें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं गेंदबाजों की रैंकिंग में अक्षर पटेल सातवें स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। सऊदी अरब में दो हवाई अड्डों पर ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। हमले में 3 लोग मारे गए। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने रियाद को निशाना बनाकर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को विफल किया। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। यूक्रेन में रूस के भीषण हमले से 25 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग घायल। चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज कैरोलिना मोचोवो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा और मानुष शाह और दिया चिताले ने इतिहास रचते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। आईसीसी ने ताजा क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर करियर की सर्वश्रेष्ठ सातवीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं, जबकि एक दिवसीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India joins US and 13 other economies in signing joint ministerial statement to address global excess capacity and production in key manufacturing sectors. Tensions in the West Asia escalate after Houthis attack 2 airports in Saudi Arabia, killing 3. Saudi-led coalition intercepts ballistic

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और ये है दिल का मेल बॉक्स। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ना कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं, हुए भी हैं और अभी भी हैं, जिनकी डायलॉग डिलीवरी ना सबसे ज्यादा मकबूल रही है। वो जाने ही जाते हैं अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए। एक व्यक्ति, एक हस्ती को हमने आज सुबह खो दिया है, नाना पाटेकर। लेकिन एक और व्यक्ति, एक और हस्ती जो है, जिनका आज 100वां जन्मदिन है, और वो राजकुमार, जो शायद अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए पृथ्वीराज कपूर और सौरभ मोदी की तरह ही सबसे ज्यादा फेमस हुए फिल्म इतिहास में। तो आज उनका 100वां जन्मदिन है और उन्हीं के को याद करते हुए जो ये पहला गाना है आप तक पहुंच रहा है, इसकी फरमाइश भी कई लोगों ने की है, उनके नाम मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो fmgoldairdelhi@gmail.com पर आप भेज सकते हैं अपनी मेल्स जो हैं वो हम तक पहुंचाइए। अपनी पसंद के गाने, फिल्म का नाम पता है तो फिल्म का नाम भी आप भेज सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
4: जिंदगी के सपने तभी सच होते हैं जब आप करते हैं स्मार्ट प्लानिंग।
5: LIC लाया है एक नया प्लान, नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान। एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस्ड गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स।
4: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट। LIC नवजीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें।

0: LIC हर पल आपके साथ।
1: मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के तहत कानूनी तौर पर मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने उपचार और अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित फैसले स्वयं ले सकता है। साथ ही सुसाइडल अटेम्प्ट के खिलाफ सजा भी नहीं होगी। ये हम सबका दायित्व है कि मानसिक बीमारियों का इलाज कानूनी और नैतिक दायरे में रहकर हो।
2: इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज और स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू है आपके साथ और ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपने पहला गाना सुना मेरे हुजूर फिल्म से, जिसकी फरमाइश की थी मास्टर अशोक कुमार वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुड़ाना, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप ने। और अब आ रहा है एक और गाना राजकुमार साहब का ही, जो कि है, पहले गाना सुन लें।

0: अब प्रस्तुत है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन।
1: नरेंद्र मोदी जी,

केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राज्य मंत्री चंद्रशेखर हेमासानी जी, विभिन्न राज्य

सरकारों के मंत्रीगण, जीएसएमए बोर्ड के सभी मेंबर्स, दुनिया भर से आए टेलीकॉम ऑपरेटर्स के प्रतिनिधिगण, इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपर्ट्स, देश के अलग अलग कॉलेजेस और स्टार्टअप से आए मेरे युवा साथी देवी और सज्जनों, आज 8 अक्टूबर भारत के लिए यह एक विशेष दिन है। आज के दिन को हम एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपने सभी जाबाजों को नमन करता हूं। देश को एयरफोर्स डे पर शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसे अभी सिंधिया जी बता रहे थे, कल ही मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में देश की सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हुए हैं। मेरे लिए ये सेवा की सहज यात्रा रही है। मैं हर देशवासी का दुनिया भर में भारत के हर मित्र का शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, ये भी संयोग ही है कि इसी अवसर पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस के सम्मेलन के भी 10 वर्ष पूरे हुए हैं। इस साल जीएसएमए बोर्ड की बैठक के लिए चुना गया। मैं दुनिया भर से आए टेलीकॉम ऑपरेटर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपर्ट्स, एकेडेमिया और स्टार्टअप के आप सभी रिप्रेजेंटेटिव्स का भारत में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज सुबह ही एक खबर आई है कि मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। उन्होंने समाज में व्याप्त व्यवस्था पर अपनी फिल्मों के माध्यम से करारा प्रहार किया। वे एक ऐसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने बुराइयों के विरुद्ध काम किया। उनकी वाणी जितनी तेज थी, उनकी खामोशी भी उतनी ही प्रभावी थी। वो देश विरोधियों पर निरंतर अंकुश के समर्थक थे। मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे इंडिया मोबाइल कांग्रेस में के कई एडिशंस में आप सभी के बीच आने का अवसर मिला है। टेलीकॉम सेक्टर

डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे इवॉल्व हुई, ये प्लेटफॉर्म इसका साक्षी रहा है। 2022 में इसी मंच से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में है जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बड़ी है। साथियों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इसी मंच पर 2024 में हमने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU की मौजूदगी देखी। तब हमने डिजिटल वर्ल्ड के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की जरूरत पर बात की थी, और पिछले साल इन्वेस्ट, इनोवेट और मेक इन इंडिया पर चर्चा की थी। आज भारत टेलीकॉम सेक्टर में जहां पहुंचा है उसमें इंडिया मोबाइल कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीते वर्षों में ये प्लेटफॉर्म भारत की प्रगति का, भारत के सपनों का मंच बनकर उभरा है। इसलिए मैं आप सभी का विशेष अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, इस साल आप सभी ने इस समिट में अपने मंथन के लिए विषय तय किया है, स्केल विदाउट बाउंड्रीज, हर सीमा से परे जाकर विस्तार। मैं आपको भारत के अनुभवों से बताना चाहूंगा कि हमने कैसे स्केल विदाउट बाउंड्रीज के सपने को जीकर दिखाया है। साथियों, जब हम टेलीकॉम की बात करते हैं तो अक्सर नेटवर्क की चर्चा होती है, स्पेक्ट्रम पर डिबेट चलती है, टावर्स की रीच की, स्पीड की बातें होती है, लेकिन भारत के लोगों के लिए टेलीकॉम के मायने और भी रहे हैं। बीते 10-12 वर्षों में मोबाइल फोन आधुनिक कम्युनिकेशन के माध्यम के साथ साथ गुड गवर्नेंस का भी अहम टूल बनकर सामने आया है, और ये हमारे डिजिटल इंडिया विजन के कोर में रहा है। साथियों, आज हम सुनते हैं कि भारत में डेटा सस्ता है, मोबाइल फोन सस्ते हैं, मोबाइल फोन यूजर बेस इतना एक्सपेंड हो गया है, ये अपनी जगह सब सच है। लेकिन ये हुआ कैसे और ये सब किया क्यों गया, ये जब हम समझेंगे तो सभी को भारत का फोकस एरिया एकदम क्लियर होगा। साथियों, एक दशक पहले तक भारत में डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ी चुनौती थी। आधुनिक टेक्नोलॉजी एक प्रिविलेज बनती जा रही थी, यानी जिसके पास साधन है वही आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ ले सकता था। भारत में यही स्थिति बनती जा रही थी। डिजिटल इंडिया अभियान से हमने इस स्थिति को बदलने की ठानी, और इसके सेंटर में मोबाइल फोन को लेकर के आए हैं। ये टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन का बहुत बड़ा प्रयास

इसके लिए टेलीकॉम सेक्टर में हर जरूरी रिफॉर्म्स किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया। हमने फोकस किया कि मोबाइल फोन और अन्य टेलीकॉम हार्डवेयर भारत में ही बने। साथियों, ऐसे हर प्रयास से मोबाइल फोन और डेटा तक भारत के आम नागरिक की पहुंच और सुलभ हो गई और आज ये भारत के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। कोविड के दौरान भी हमने देखा था कि कैसे सब कुछ रुक गया था, लेकिन भारत में दफ्तर चलते थे, बैंक चलते रहे, पढ़ाई चलती रही। ये भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के कारण हुआ। मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी ने एजुकेशन, हेल्थ, पेमेंट और गवर्नमेंट सर्विसेज को बिना बाधा चालू रखा। आज दूर सुदूर गांव गरीब के बच्चे भी क्वालिटी नॉलेज एक्सेस कर पा रहे हैं। डिजिटल लर्निंग सबकी पहुंच में आ रही है। साथियों, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जिससे डिजिटल इंडिया का इंपैक्ट और ज्यादा पता चलता है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है। आप जानते हैं कि भारत भाषा और भूगोल हर प्रकार से डाइवर्स देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसके कारण लोगों के जीवन में अनेक असुविधाएं भी आती हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी ने इस डाइवर्सिटी को भी सुविधा से जोड़ा है। पहले ज्यादातर बैंक शहरों में ही होते थे, अस्पताल शहरों में होते थे, सरकारी दफ्तर ब्लॉक या जिला स्तर पर रहते थे। यानी कुछ भी काम करना हो, सरकारी सर्विस लेनी हो, तो लोगों का पैसा और समय दोनों खर्च होता था। डिजिटल गवर्नेंस ने इन परिस्थितियों को बदला है। आज सरकार की सैकड़ों सर्विसेज मोबाइल फोन पर है। सरकारी मदद अब सीधे बेनिफिशियरीज के खाते में जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करीब 50 लाख करोड़ रुपए, 50 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के मोबाइल में भेजे, बैंक अकाउंट में पहुंचे। और इससे करीब 5 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 5 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं।

अब मुझे बताइए, जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हो गई है वो क्या मोदी को प्यार करेंगे क्या? मैंने सही किया कि नहीं किया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस सारे गलत कामों को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो कितने चिल्लाते रहे चीखते रहे, मैं इसको ठान के बैठा हूं, करके रहूंगा। अगर साथियों पुरानी व्यवस्था होती तो सरकार का 5 लाख करोड़ रुपए लीकेज में चला जाता और ऐसे लोगों की जेब भर देता। मोदी ने इसको रोका है और अब वही पैसा सही लाभार्थी को मिल रहा है और बचा हुआ पैसा सही काम के लिए उपयोग आ रहा है। साथियों पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हम 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में जमा कर चुके हैं। ये राशि हर 4 महीने में जाती है और किसान को मोबाइल फोन पर ही इसका मैसेज मिल जाता है। ये पैसा उन करोड़ों छोटे किसानों तक पहुंचा है जिन तक कभी सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाता था। यानी साथियों मोबाइल फोन सिर्फ चैट का माध्यम नहीं रहा बल्कि इसने लेस ट्रैवल, लेस वेटिंग, लेस कॉस्ट, मोर कन्वीनियंस, ये सब कुछ एंश्योर किया है और यही टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सिटीजन डिविडेंड है। साथियों बीते दशक में भारत में के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार हुआ है, रिमोट एरियाज में टावर्स लगाए गए, ऑप्टिकल फाइबर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और डेटा भी सस्ता हुआ। इससे इकोनॉमी के नए सेक्टर्स का भी निर्माण हुआ है। इससे टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन सेक्टर में नए कंज्यूमर भी बने और नए क्रिएटर्स की भी एक नई जनरेशन तैयार हुई है। आप गेमिंग का ही सेक्टर देखिए, एक अनुमान है कि आज भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से गेमिंग इकोसिस्टम से जुड़े हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में भारत के युवाओं की है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों का युवा भी इससे जुड़ा है। अब वो गेम से जुड़ने के साथ ही ई स्पोर्ट्स में कम्पीट कर रहा है, गेमिंग कंटेंट बना रहा है और नए गेमिंग बिजनेसेस खड़े कर रहा है। यानी भारत में मोबाइल फोन आज गेमिंग कंसोल भी है और क्रिएशन का स्टूडियो भी बन गया है। साथियों भारत में हुई टेलीकॉम क्रांति ने यही बदलाव कंटेंट की दुनिया में भी ला दिया है। बेहतर फास्ट कनेक्टिविटी और सस्ते डेटा ने अनेक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया और रीजनल ओटीटी को गांव कस्बों तक पहुंचा दिया है। इससे भाषा से जुड़ी जो समस्याएं आती थी वो बंदिशें थी वो भी दूर हो गई है। यानी केवल कंटेंट क्रिएशन से जुड़ी इंडस्ट्री ही

भारत में आज हजारों करोड़ रुपए की हो गई है, जिससे लाखों लाख लोगों को कमाई हो रही है। यानी मोबाइल फोन ने भारत में कंटेंट क्रिएशन की को भी डेमोक्रेटाइजेशन का कर दिया है। साथियों, आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं चलता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है। जब मैसेज आए, तो उसे पता हो कि वह असली है या फेक। जब पेमेंट हो, तो उसे विश्वास हो कि उसका पैसा सुरक्षित है। जब वह किसी फॉर्म में अपना डेटा दे, तो उसे विश्वास हो कि उसका डेटा सुरक्षित है। साथियों, टेक्नोलॉजी स्केल तभी प्राप्त करती है जब वो ट्रस्ट हासिल करती है। और आप सभी जानते हैं कि साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम भी सीमाएं नहीं मानते, वो पहले ही बाउंड्री को बाहर चले गए। एक देश में बैठा व्यक्ति किसी दूसरे देश की मदद से किसी तीसरे देश में क्राइम कर सकता है। डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके। भारत ने इस दिशा में अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है और भारत अपने अनुभवों को विश्व के साथ शेयर करने के लिए हमेशा तैयार है। साथियों, इस दशक में अब सिर्फ 4 साल बचे हैं इस डेकेड में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस एडिशन में अब आप जो चर्चा करेंगे, वो अगले दशक के रोडमैप को सशक्त करेगा। और ये रोडमैप भारत के साथ ही पूरे विश्व के मोबाइल मार्केट को दिशा देगा। बीते वर्षों में भारत ने कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की यात्रा तय की है। अब भारत उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है जहां प्रोडक्ट डिजाइन भी भारत में होगा, उसकी टेक्नोलॉजी और आईपी भी भारत की होगी। इसके लिए हर जरूरी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, हर जरूरी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। यानी टेलीकॉम सेक्टर में भी रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है। दशकों पुराने कानूनों को हम आधुनिक बना रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के जरिए हमने मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है। एजीआर और बैंक गारंटी जैसे स्ट्रक्चरल वंडर्स को रेशनलाइज, वंडर्स को वंडर्स में बदलने का काम भी हमारी तरफ से हो रहा है। और गतिशक्ति संचार पोर्टल ने राइट ऑफ वे अप्रूवल्स को

0: डिजिटल माध्यम से और तेज बनाया है। साथियों, भारत का सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी रफ्तार पकड़ रहा है। अभी तक 5 लोकेशंस पर कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अगले फेज में हमारा फोकस पूरी सप्लाई चेन पर है, यानी भारत टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र में बड़े कदम उठा रहा है। साथियों, बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन विकास की यात्रा नित नए पड़ावों को पार करने की है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। यहां जो टेक्नोलॉजी डिस्प्ले हुई है उनका अपना महत्व है, लेकिन आईएमसी को उन पार्टनरशिप के लिए याद किया जाए जो यहां बनी है, उन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए याद किया जाए जो यहां शुरू हुए हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए याद किया जाए जो यहां से दुनिया तक पहुंचे हैं, और उन इनोवेशंस के लिए याद किया जाए जिन्होंने भारत से निकलकर मानवता की सेवा की है। हमें आईएमसी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसके लिए ही जी जान से प्रयास करते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन।

एक आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू हाजिर है और ये है तस्वीर, जिसमें हम बात करते हैं अपने ही देश की ऐसी खूबसूरत जगहों की जहां जाकर आपका वापस लौटने का मन ही ना करे। और आज हम बात करेंगे उस पहाड़ी शहर की जो मेघालय की राजधानी तो है ही, पूर्वोत्तर भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। अंग्रेजों को यहां की कुदरती खूबसूरती इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट नाम दे दिया था। ये है समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर बसा शिलोंग, जो अपनी हरी भरी वादियों, झरनों और सुहाने मौसम के लिए मशहूर है। तो इसी की बातें आज हम करेंगे तस्वीर में, सुनते रहिए, साथ साथ गानों का भी सिलसिला जारी है। तो पहले गाने का लुत्फ उठाइए, फिर लौट कर आते हैं।

शिलांग में औपनिवेशिक दौर की इमारतों और स्मारकों की भरमार है जो कि इसकी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाते हैं। शिलांग कैथेड्रल गॉथिक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। ऑल सेंट चर्च हलचल भरे शहर के बीच एक शांत और आध्यात्मिक जगह है जो कि औपनिवेशिक वास्तुकला का एक और बेहतरीन उदाहरण है। डॉन बॉस्को म्यूजियम एक 7 मंजिला इमारत है जहां प्राचीन कलाकृतियों का विशाल भंडार देखा जा सकता है। यहां आप पूर्वोत्तर भारत की स्थानीय संस्कृतियों के बारे में जानकारी पा सकते हैं।

बिल्कुल पूछेंगे दुनिया वाले जब आप शिलोंग की पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे या अपने स्टेटस पर लगाएंगे, तो दुनिया वाले बिल्कुल पूछेंगे कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि शिलोंग है ही इतना खूबसूरत। शिलोंग का सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेस है शिलोंग पीक, जो कि इस राज्य का सबसे ऊंचा स्थान भी है। इस चोटी से आसपास के नजारों का 360 डिग्री व्यू दिखता है। एक मिस्टीरियस सा कोहरा ना यहाँ अक्सर छाया रहता है, जो इस जगह की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस पीक के अलावा आप बॉर्ड्स झील देख सकते हैं या उमियम झील। ये दोनों ही इंसानों द्वारा बनाई गई कृत्रिम झीलें हैं। उमियम झील में आप वाटर स्पोर्ट्स का आनंद भी उठा सकते हैं। झील के किनारे आप टहलिए या फिर पिकनिक के लिए भी ना ये जगह बहुत पसंद की जाती है। और कुदरती खूबसूरती के बीच पानी से लबालब भरी झील में बोटिंग करने से बेहतर और क्या हो सकता है। बोटिंग करते करते रोमांटिक गाने आप खुद भी गा सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, जैसे कि मैं आपको सुनवा रही हूँ। तस्वीर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी FM गोल्ड पर।

0: रातों को नींद ना आना, कच्ची नींद लगना, नींद का बार बार टूट जाना, ये लक्षण हो सकते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर के। ये एक मनोरोग भी हो सकता है। समय ना गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शिलांग की हम बातें कर रहे हैं, जो कि अलग अलग संस्कृतियों का संगम है वहां पर।

आप मुख्य रूप से आप देखें तो खासी, जयंतिया और गारो जनजातियां रहती हैं। शहर की संस्कृति बहुत ही जीवंत है और इसे यहाँ के कई त्योहारों, स्वादिष्ट खान पान, अनोखे संगीत और लोक नृत्यों के जरिए आप महसूस भी कर सकते हैं। मशहूर शिलांग ऑटम फेस्टिवल इस जीवंत सांस्कृतिक माहौल का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो संगीत, कला और संस्कृति को एक साथ लाता है। एक रंगारंग आयोजन के जरिए स्थानीय प्रतिभाओं के लिए मंच का काम भी करता है। कुदरत के अलावा शिलांग की जो सबसे बड़ी पहचान है वो यहाँ के लोगों का संगीत प्रेम ही है, इसीलिए इसे भारत की रॉक म्यूजिक कैपिटल भी कहा जाता है। संगीत संस्कृति यहाँ के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ कई कैफे और वेन्यू हैं जहाँ लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं, जो संगीत के प्रति शहर के प्यार को दर्शाती हैं।

खाने पीने की अगर बात करें तो शिलोंग वहां भी निराश नहीं करता। यहां के खाने में पारंपरिक आदिवासी स्वाद और आसपास के इलाकों के स्वाद का मेल देखने को मिलता है। यहां के खास पकवानों में है जादो, जो कि खासी चावल का व्यंजन है, और तुंगरिमबाई, जो कि सोयाबीन की चटनी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि जो कुछ भी आप ऑर्डर कर रहे हैं उससे पहले कंफर्म कर लीजिए कि जो आपको आपके पास आ रहा है वो वेज ही आ रहा है, क्योंकि उस इलाके में नॉन वेज बहुत ज्यादा चलता है। तो वेज के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा उस जगह को जहां पर आपको प्योर वेज खाना मिल जाए।

0: अरे रामवचन, ये क्या हाल बनाया हुआ है भाई? दुकान पूरी तरह अस्त व्यस्त, माल भी नहीं डलवाया, दुकानदारी नहीं करनी तूने?
1: अब क्या बताऊं भैया, धंधे में जब से घाटा लगा है बस घोर उदासी। काम में दिल नहीं लगता, मन करता है कहीं जाके मर जाऊं।
2: सावधान, ये लक्षण अवसाद यानी डिप्रेशन के भी हो सकते हैं। तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज एबास और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए। रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।
4: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

शिलोंग की बातें नीतू के साथ हो रही हैं तस्वीर में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। शिलोंग की प्राकृतिक सुंदरता बेमिसाल है। यहाँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ कुदरत अपने शानदार रूप में दिखती है। एलिफेंट फॉल्स, स्वीट फॉल्स ऐसी ही जगह हैं जो अपनी साफ सुथरी सुंदरता से प्रकृति प्रेमियों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। एलिफेंट फॉल्स घनी हरियाली से घिरा हुआ 3 स्टेप्स वाला खूबसूरत झरना है। इसका नाम इसके बेस पर मौजूद एक पत्थर के आकार के कारण पड़ा, जो कि हाथी जैसा दिखता है। ये इलाका पिकनिक और नेचर फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन माना जाता है। आपको अगर तितलियां पसंद हैं तो आप यहाँ बटरफ्लाई म्यूजियम भी जा सकते हैं, जहाँ सिर्फ तितलियां ही नहीं बल्कि कीट पतंगों की भी बहुत सारी किस्में देखने को मिलेंगी। इस म्यूजियम में आपको इस इलाके के जो तरह तरह के कीट पतंगे हैं उनके दिलचस्प जानकारी भी मिलेगी। तो जाइए, देखिए, एंजॉय कीजिए। शिलोंग बहुत ही खूबसूरत

तो जहाँ आप हैं वहाँ हम हैं, तो फिर शिलोंग चले आइए। शिलोंग से के तो बेस्ट जगह है, शिलोंग जाने का तो मन ना आपका वहां से वापस आने का कभी करेगा ही नहीं। और वहां जाने के लिए बेस्ट टाइम भी है यही सितंबर से मई के बीच का। जून से अगस्त सितंबर तक मानसून रहता है और उस समय वहां पर झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं, लेकिन बारिश में घूमना फिरना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप जाने से पहले चाहे तो पूरी रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो आप पहुंचेंगे सीधे शिलोंग में उमराई एयरपोर्ट पर, जिसे कि अब शिलोंग एयरपोर्ट भी कहते हैं। और ट्रेन से जाने की अगर आपकी प्लानिंग है तो ट्रेन आपको गुवाहाटी तक ले जाएगी, वहां से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो जाइए, इंजॉय कीजिए। ये जो जिंदगी है ना, हमें एक बार मिली है, इस जिंदगी में हम जितना घूम लेना उतना कम है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत के उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से

0: जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी न केवल सिर्फ अंतिम गांव तक बल्कि हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज फिजी में 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 के वार्ताध्यक्ष क्रिस बोवन के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि बैठक में उन्होंने संतुलित और सार्थक परिणामों के लिए भारत की प्रतिबद्धता और COP31 के वार्ताध्यक्ष के साथ मिलकर काम करने की पुष्टि की। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 26/11 और पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायुशक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी।
1: वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the 10th edition of the India Mobile Congress IMC at Yashobhumi in New Delhi today. The four-day event, which began yesterday, showcasing India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said, "The Indian Mobile Congress platform has witnessed the evolution of the telecom sector and digital connectivity in India." He said today 5G connectivity has reached every district of the country. Mr. Modi added that there are now more than 5,50,000 base stations to operate 5G connectivity across India.
1: बीते वर्षों में

Garden. मौसम कुदरत का आईना है जो हर पल अपना रंग बदलता है, कभी धूप की गर्मी तो कभी बारिश, कभी ठंडक और कभी सर्द हवा का एहसास, क्योंकि मौसम बदल रहा है धीरे धीरे और सर्द हवा का एहसास भी हमें हो रहा है। और दोस्तों, मौसम बाहर का नहीं बदलता बल्कि हमारे मन और सेहत पर भी असर डालता है, इसीलिए हर मौसम का स्वागत कीजिए। जी हाँ, और इसी के साथ हम भी आपका स्वागत करते हैं आप सबका अपने इस घर आंगन के शो में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और हूँ सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर। और मौसम की जब बात की है तो मुझे याद आ रहा है कि मौसम तब अच्छा लगता है जब गीत और संगीत सुनने को मिले, और गीत और संगीत का ध्यान तो हम रखते ही हैं क्योंकि हम चाहते हैं सबसे अपने आज बहुत सारे दिन हैं, आगे कार्यक्रमों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक आप सुनिए खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आज बहुत सारे दिन हैं, हम एक एक करके सब दिनों की आज बात करेंगे आपसे। सबसे पहले बात करते हैं वायु सेना दिवस की। देश की आसमान पर पहरेदारी को सलाम। और आज का दिन हमें गर्व से भर देने वाला है। यह दिन भारतीय वायुसेना के साहस, शौर्य, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण को नमन करने का अवसर है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और तब से लेकर आज तक हमारी वायुसेना ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते हमारे लड़ाकू विमान केवल तकनीक और ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि उनके पीछे उन वीर जवानों का साहस है जो हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। सोचिए, जब हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारे वीर जवान देश की सीमाओं और आसमान की निगरानी कर रहे होते हैं। तेज हवाओं, कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच भी उनका हौसला बिल्कुल डगमगाता नहीं है। भारतीय वायुसेना सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों के समय भी राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बाढ़ हो, भूकंप हो या किसी आपदा के बाद लोगों तक मदद पहुंचानी हो, हमारे वायु योद्धा हमेशा आगे दिखाई देते हैं। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम देश की सुरक्षा केवल सीमा पर खड़े सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, एक नागरिक के रूप में हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने देश, अपने संविधान और अपने समाज के प्रति जिम्मेदार रहें। तो आइए इस वायुसेना दिवस पर हम उन सभी वीर जवानों को दिल से नमन करें जिन्होंने देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित किया है। उन परिवारों को सलाम करें जिनके प्रियजनों को देश सेवा के लिए हिम्मत और हौसले के साथ विदा किया गया है। आसमान की ऊंचाइयों को छूते हमारे वायु योद्धाओं के जज्बे को सलाम, उनकी बहादुरी को सलाम और सबसे बढ़कर भारत माता की रक्षा के लिए उनके समर्पण को सलाम।

और दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ आंखों की। आंखें हमारे स्वास्थ्य का हिस्सा भी हैं और हमारी खूबसूरती का हिस्सा भी हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कैसे अनमोल उपहार की जिसके बिना हमारी दुनिया के रंग, रिश्तों के चेहरे और प्रकृति की खूबसूरती अधूरी लगने लगे, और वो है हमारी आंखों की रोशनी। हर साल 8 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, और इस दिन का उद्देश्य लोगों को आंखों की सेहत और दृष्टि संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक करना है। हम अक्सर अपनी आंखों की देखभाल तब करते हैं जब कोई हमें परेशानी महसूस होने लगती है, लेकिन आंखों को स्वस्थ रखने के लिए समस्या का इंतजार नहीं, बल्कि समय समय पर आंखों की जांच करवाना जरूरी है। लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन देखने के दौरान बीच बीच में आंखों को आराम दें, पढ़ते समय पर्याप्त रोशनी का ध्यान रखें और आंखों को बार बार रगड़ने से बचें। संतुलित आहार लें जिसमें हरी सब्जियां, फल और जरूरी पोषक तत्व शामिल हों, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम आंखों में धुंधलापन, दर्द, लगातार लालिमा, रोशनी से परेशानी या देखने में कोई बदलाव महसूस करते हों तो इसे नजरअंदाज ना करें और नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लें। याद रखिए, हमारी आंखें सिर्फ हमें देखने की क्षमता नहीं देती, बल्कि हमें दुनिया को महसूस करने और उसके खूबसूरत रंगों से जुड़ने का अवसर भी देती हैं। तो आज खुद से एक वादा करें, आंखों की देखभाल करेंगे, नियमित जांच करवाएंगे और अपनी दृष्टि को स्वस्थ रखने के लिए जागरूक रहेंगे, क्योंकि आंखों की रोशनी अनमोल है और इसकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है।

और अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह की, जो कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक है। और प्रकृति से जुड़ना सिर्फ पेड़ पौधों को देखना नहीं, बल्कि उन अनगिनत जीवों को समझना भी है जिनके साथ मिलकर हमारी धरती का जीवन संतुलित रहता है। दोस्तों, हर वर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है लोगों को वन्य जीवों के प्रति और संरक्षण के प्रति जागरूक करना उनके संरक्षण के लिए। और इस साल की जो थीम है वो है यानी आवासों को जोड़ना, वन्य जीवों को फलने फूलने देना। हमारे जंगलों में रहने वाले बाघ, हाथी, हिरण, तेंदुए, पक्षी और ना जाने कितने छोटे बड़े जीव प्रकृति के महत्वपूर्ण हिस्से में हैं। हर जीव अपनी एक भूमिका लेकर आता है। कोई जंगल में बीज फैलाता है, कोई खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखता है, और कोई पर्यावरण को स्वस्थ रखने में मदद करता है। लेकिन बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई, अवैध शिकार और प्राकृतिक आवासों को नष्ट होना वन्य जीवों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में वन्य जीवों की रक्षा सिर्फ सरकार का या वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें जंगलों और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील होना होगा। उनके प्राकृतिक आवासों को नुकसान न पहुंचाएं, प्लास्टिक और कचरा जंगलों में न फैलाना, और वन्य जीवों से जुड़ी किसी भी गैर कानूनी गतिविधि की सूचना संबंधित विभाग को देना छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, जंगल सुरक्षित होंगे तो वन्य जीव सुरक्षित होंगे, और वन्य जीव सुरक्षित होंगे तो हमारी प्रकृति

पुत्री और आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। तो आइए एक संकल्प लें कि वन्य जीवों की रक्षा धरती की रक्षा है, और धरती हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी है। तो प्रकृति से प्यार करेंगे, वन्य जीवों का सम्मान करेंगे और उनके संरक्षण में अपना योगदान देंगे।

बताते हैं आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

दोस्तों अब बात करते हैं कुछ विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। आकाश की ओर देखते हुए कभी आपने सोचा है कि इन चमकते सितारों को यानी कि उस पार क्या है ऐसा? आखिर हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं और भी जीवन संभव है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने में हमारी जिज्ञासा हमें अंतरिक्ष तक ले जाती है। आज अंतरिक्ष विज्ञान सिर्फ चांद और सितारों तक सीमित नहीं

मौसम की जानकारी संचार टीवी और मोबाइल नेटवर्क, जीपीएस, खेती, आपदा प्रबंधन और पृथ्वी की निगरानी, इन सब में अंतरिक्ष तकनीक हमारी मदद कर रही है। भारत ने भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों को, यानी कि उनके माध्यम से देश का गौरव बढ़ाया है। तो आइए इस विश्व अंतरिक्ष सप्ताह पर हम अपने बच्चों और युवाओं में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाएं, क्योंकि हो सकता है आज वो बच्चा रात के आसमान में सितारों को देखकर सवाल पूछ रहा है, वही कल भारत का अगला अंतरिक्ष वैज्ञानिक बने। तो आसमान सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि सपने देखने और उन्हें सच करने के लिए भी होता है।

और अब बात करते हैं कुछ मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि के बारे में। आज हम याद करें हिंदी और उर्दू साहित्य के महान कथाकार उपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद को। उन्होंने अपने साहित्य में उस दौर के आम इंसान की जिंदगी, उनके संघर्ष, गरीबी, सामाजिक भेदभाव और मानवीय संवेदनाओं को बेहद सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं

में हमें गांव की मिट्टी की खुशबू भी मिलती है और समाज की सच्ची तस्वीर भी। गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन जैसे उपन्यास और ईद का पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर जैसी कहानियां आज भी पाठकों को दिल को छू लेती हैं। प्रेमचंद सिर्फ कहानीकार नहीं थे, समाज को देखने और समझने वाली कैसी दृष्टि थे जिन्होंने अपनी कलम से उन लोगों की आवाज को शब्द दिए जिन्हें अक्सर समाज अनदेखा कर देता है। उनकी कहानियां हमें संवेदनशील बनाती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं कि इंसानियत, ईमानदारी और समानता का महत्व कितना बड़ा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें खास तौर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जिनकी कलम से भारतीय समाज की धड़कनों को शब्द दिए और मुंशी प्रेमचंद को कौशल यानी कि शत शत नमन।

और दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी चिंतक और जननेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, जिन्होंने अपना जीवन देश की आजादी, लोकतंत्र और सामाजिक बदलाव के लिए समर्पित कर दिया। जयप्रकाश नारायण को लोग प्यार से और सम्मान से लोकनायक कहते थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक मूल्यों से विश्वास। 8 अक्टूबर को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आइए उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन से प्रेरणा ले कि सच्चा नेतृत्व पद या सत्ता से नहीं बल्कि समाज और देश के प्रति समर्पण से बनता है।

और दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम का वक्त अब समाप्त होने को है और हमें यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, और इसी वादे के साथ कि आप रहेंगे खुश, स्वस्थ और मस्त। और इसी कामना के साथ आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए सिमरन कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत के उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। उन्होंने कहा कि इस मंच ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की सुविधा दी है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रसार तभी हो सकता है जब वो किफायती और समावेशी हो। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर

0: बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने आगामी 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में महत्वाकांक्षी और संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन, व्यावहारिक दृष्टिकोण और आपसी सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया है। सम्मेलन से पहले फिजी में आयोजित एक बैठक के दौरान राजनीतिक समझौते के संभावित क्षेत्र और परिणाम विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के मद्देनजर अब केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर कार्रवाई और आपसी सहमति की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायुशक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 883 अंक गिरकर 71,756 पर और निफ्टी 308 अंक कम होकर 22,295 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said digital connectivity has powered education, healthcare and government services. Mr. Modi today inaugurated the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said today even children in remote villages and from poor families are able to access quality knowledge. Mr. Modi said, over the past 10 to 12 years, the mobile phone has emerged not only as a medium of modern communication, but also as a crucial tool for good governance. He said today, hundreds of government services are available on mobile phones. The Prime Minister said, the Indian Mobile Congress platform has witnessed the evolution of the telecom sector and digital connectivity in India.
2: बीते वर्षों में भारत ने कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की यात्रा तय की है। अब भारत उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है जहां प्रोडक्ट डिजाइन भी भारत में होगा, उसकी टेक्नोलॉजी और आईपी भी भारत की होगी। इसके लिए हर जरूरी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, हर जरूरी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, यानी टेलीकॉम सेक्टर में भी रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है।
1: The 57th Goods and Services Tax GST Council meeting is underway at Bharat Mandapam in New Delhi to discuss policy reforms to resolve disputes and improve the flow of input tax credit with the aim to reduce the time and cost of compliance. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman is chairing the meeting. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Karnataka CM DK Shivakumar, Jammu and Kashmir CM Umar Abdullah, Haryana CM Naib Singh Saini and finance ministers of states and union territories are also attending the meeting.

आज सुबह जब लोगों ने समाचार सुने तो एक ऐसी खबर आई जो सिने प्रेमियों के लिए काफी शॉकिंग थी। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बनाई, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। बात हो रही है नाना पाटेकर की। कलाकार बेमिसाल लेकर आपके साथ है रजनी। शुरुआत करते हैं नाना पाटेकर पर फिल्माए एक बहुत ही मधुर गीत के साथ। फिल्म का नाम है गुलाम-ए-मुस्तफा।

महाराष्ट्र की रंगभूमि से अपने सफर की शुरुआत करने वाले विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया ने प्यार से नाना पुकारा, उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 2 महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड से सम्मानित पद्मश्री नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र में मुरूद जंजीरा में हुआ। उनके पिता को नाटक देखना बहुत पसंद था और वो उन्हें भी नाटक देखने के लिए प्रेरित करते थे और यहीं से उनके मन में अभिनय के लिए प्रेम जागा और कुछ समय बाद वो खुद भी अभिनेता के तौर पर रंगमंच से जुड़ गए। अगला गीत फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन से आवाजें हैं कुमार सानू और सुदेश भोसले की।

1978 में मराठी फिल्म मिमागमन में एक छोटे से किरदार से नाना पाटेकर ने फिल्मों में अपनी अभिनय यात्रा शुरू की। इसके बाद कुछ मराठी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं करने के अलावा उन्होंने 1978 में आई हिंदी फिल्म गमन में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था। 1986 में आई फिल्म अंकुश में उन्होंने एक अहम किरदार निभाया और इसी से उन्हें पहचान भी मिली। इसके बाद प्रतिघात, अंधा युद्ध, मोहरे, त्रिशाग्नि, आवाम जैसी फिल्में उन्होंने की। मीरा नायर की बहुचर्चित फिल्म सलाम बॉम्बे में उनके अभिनय को बहुत सराहना मिली। लेकिन 1989 में आई उनकी जो फिल्म थी परिंदा, उसने उन्हें घर घर में पहचान दिला दी और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला

इसके बाद प्रतिघात, अंधायुद्ध, मोहरे, त्रिशाग्नि, आवाम जैसी फिल्में उन्होंने की। मीरा नायर की बहुचर्चित फिल्म सलाम बॉम्बे में उनके अभिनय को बहुत सराहना मिली, लेकिन 1989 में आई उनकी जो फिल्म थी परिंदा, उसने उन्हें घर घर में पहचान दिला दी और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला।

90 और 2000 के दशक में उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन, क्रांतिवीर, तिरंगा, अग्निसाक्षी, खामोशी, गुलाम मुस्तफा, शक्ति, अब तक 56, वजूद और युग पुरुष, यशवंत जैसी फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाए। 2000 के दशक में टैक्सी नंबर 9211, अब तक 56, वेलकम, पाठशाला और राजनीति जैसी फिल्में उन्होंने की और हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए और हर किरदार में नाना पाटेकर ने अपनी अलग छाप छोड़ी। उनकी आवाज में एक अलग खनक थी। वो संवाद बोलते नहीं थे, उसे जीते थे और कई बार तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाते थे। ऐसा ही कुछ जादू उन्होंने किया फिल्म खामोशी में, जिसमें कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है और बहुत ही खूबसूरती से ये किरदार उन्होंने निभाया था।

नाना पाटेकर ने 1991 की फिल्म प्रहार का निर्देशन भी किया था और साथ में अभिनय भी किया था। वो अपने काम को लेकर कितने गंभीर थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने इस फिल्म में अपना किरदार निभाने के लिए 3 साल तक मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ कड़ी सैन्य ट्रेनिंग ली थी। इसके अलावा उन्होंने 1988 में टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन की थी और उन्हें ऑनररी रैंक भी मिली थी। साथ ही 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान वह तत्कालीन रक्षा मंत्री से विशेष अनुमति लेकर अग्रिम मोर्चे पर भी गए थे। तो इसी फिल्म से यानी प्रहार से आपको अगला गीत सुनवाते हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 अक्टूबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो दे लाइफ टाइम सम अशर्ड के 10% का एनुअल इनकम और शॉर्ट और फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म चूज करने की फ्रीडम
4: है? ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
3: अच्छा, और अगर मुझे लिक्विडिटी की फैसिलिटी जैसे लोन अगेंस्ट पॉलिसी, टैक्स बेनिफिट और डेथ कवर भी चाहिए हो तो?
4: है ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
3: अरे इतना सब कुछ एक ही पॉलिसी में? ये पॉलिसी है ऑलराउंडर।
5: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियाँ, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी। बिक्री समापन के पूर्व अधिक जानकारी और जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
6: रोजी की तरह कॉलेज से लौटते समय फिर एक बार वैसी ही आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा हो या मुझे बुला रहा हो।
7: पूजा,
8: अरे सुन क्यों नहीं रही?
9: तुम्हें पता है ये बात अब सबको पता चल गई।
6: मुड़ के देखती हूँ, कोई नहीं होता।
10: ये साइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं, ये एक मनोरोग हो सकता है। समय न गवाएं, तुरंत मनोरोग विशेषज्ञ की सलाह लें और समाधान पाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज IBAS और स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
11: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: इस ब्रेक के बाद जारी है कलाकार बेमिसाल, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं नाना पाटेकर की। 2013 में नाना पाटेकर को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसी साल महाराष्ट्र सरकार राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार उनके नाम रहा। परिंदा, क्रांतिवीर और अग्निसाक्षी फिल्मों के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही अंगार, क्रांतिवीर, खामोशी, अपहरण, अब तक 56 जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने फिल्म फेयर, जी सिने अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड, BFJ अवार्ड जैसे कई पुरस्कार जीते। मराठी और हिंदी फिल्मों के अलावा एक तमिल फिल्म काला में भी उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी और इसके लिए उन्होंने आनंदा विक्टन सिनेमा पुरस्कार जीता। चाहे बेहद संजीदा किरदार हो या फिर जबरदस्त कॉमिक रोल, उन्होंने हर भूमिका को यादगार बना दिया। सुनते हैं उनकी बेहद लोकप्रिय फिल्म वेलकम से गीत, जिसमें उन्होंने

मेरे में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और 104.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अक्टूबर महीने की 8 तारीख व दिन है गुरुवार। अब मालूम होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आम श्रोतों तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायिका श्रीमती संगीत सोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी

Vanta Sri Tanik Tako, transmitter में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और श्री अशोक बर्मन, मुंबई में उत्कृष्ट श्री थुप्तन ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उत्कृष्टिका येशी पेमा। हम सभी आकाशवाणी सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में पहले आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित मीडिया न्यूज दोपहर 2 बजे तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: Awards. He was acclaimed for films including Parinda, Krantiveer, Agni Sakshi, Nat Samrat, Ab Tak Chappan and Yashwan. He made his Bollywood debut with Gaman in 1978 and went on to deliver notable performances in Shakti, The Power, Abharan, Taxi No. 9211 and Rajneeti. He gained widespread popularity as gangster Uday Shetty in Welcome and reprised the role in Welcome Back. He remained active in cinema until his final years, appearing in Houseful 5, O Romeo and Subedar, which was released recently. Prarthana, Akashwani News, Mumbai.
1: India has accused Pakistan of doublespeak on terrorism, saying Islamabad is attempting to gloss over its support for terror groups by announcing a reward for information on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar. India said the world has not forgotten the 9/11, 26/11 and Pahalgam attacks. Exercising its right of reply in the UN General Assembly, India's First Secretary Raghu Puri said terrorism cannot be defeated through declarations and called for action against its perpetrators, financiers and sponsors. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall conditions over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim during the day. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government to connect 25 crore students through digital and online education programs. 5G connectivity reaches every district with over 5,50,000 base stations. GST Council deliberates on policy reforms to resolve disputes and improve input tax credit flow. Supreme Court directs centre to form committee to curb unethical pharma marketing practices. Veteran actor Nana Patekar passes away. India accuses Pakistan of doublespeak on terrorism, says Islamabad cannot gloss over support to terror groups. And the nation honors sacrifices of air warriors on Air Force Day. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया, कहा पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
3: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
3: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है।

0: कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
1: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नेता निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक एआई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने एआई को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा क्या है। अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघुपुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए

0: सेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
1: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गईं और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
2: जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे आने वाले पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
3: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, अब काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है। यहाँ पे इवनिंग में लाइटनिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए हैं। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
4: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुँह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे वो देखे कि जैसे लगा कि हमने मतलब अपने मिट्टी से जुड़े हुए सब चीजें हमको यहाँ पे मिला और काफी चीजें देख को हमको ये लगा कि उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा कुछ किया कि ये चीजें देख के जाने के बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए जरूर।
1: जलियांवाला बाग मेमोरियल को आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों के बलिदान की निशानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे।
5: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
6: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
7: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
6: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनिए चंद शिव भक्ति गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज गए हैं। लीजिए श्रोता, पेश है विभिन्न पंत का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनिए कुमार सानू द्वारा गाए चंद बंगला गीत।

0: श्रोताओं, इस बंगला गीत के साथ ही विभिन्न पंत का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:23 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच। आज इस कार्यक्रम में आप सुनिए वन स्टॉप सेंटर तवांग के केस वर्कर एडवोकेट सनम जांगमू से घरेलू हिंसा, शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर हुए एक भेंटवार्ता। इनसे भेंट करता है दोर्जी ट्रेमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारे साप्ताहिक महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला मंच में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हमारे साथ आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में उपस्थित है वन स्टॉप सेंटर तवांग के केस वर्कर एडवोकेट सुनम सांगमू जी। तो सुनम जी, आपका सबसे पहले हमारे आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ।
2: आपको भी नमस्कार
1: जी। तो श्रोताओं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे साथ आज के विशेष मेहमान है एडवोकेट सुनम सांगमू, तो जाहिर सी बात है कि आज हम अधिनियमों पर ही चर्चा करेंगे और कार्यक्रम का नाम ही कार्यक्रम महिला मंच है, तो इसमें हम महिलाएं एवं बच्चों से जुड़े हुए कई सारे अधिनियमों पर बात करेंगे। तो सनम जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आज के इस कार्यक्रम में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 या घरेलू हिंसा, आप हमें बताइए कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं और घरेलू हिंसा कितने तरह के होते हैं।
2: जी शुक्रिया। घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस हम उसे कहते हैं जो हिंसा घर के चार दीवारों के अंदर होता है ना। एक छत के नीचे में जितने भी आदमी रहते हैं, जैसे कि एक महिला एक दूसरे घर में शादी करके जाते हैं तो उसका पति का परिवार हो गया, या फिर वो अपने घर में जो अपने माँ बाप भाई बहन या फिर ज्वाइंट फैमिली है तो अंकल आंटी जिसके साथ भी रहते हैं, तो मतलब एक घर के अंदर में जो हिंसा होता है उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं या घरेलू हिंसा कहते हैं। और घरेलू हिंसा के हमारे मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर में 5 टाइप्स दिया गया है, 5 टाइप्स। तो पहला है फिजिकल एब्यूज, दूसरा है इमोशनल एब्यूज, तीसरा है सोशल एब्यूज, चौथा है सेक्सुअल एब्यूज और लास्ट इकोनॉमिक एब्यूज। तो मैं इसको थोड़ा आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगी। फिजिकल एब्यूज हम किसे कहते हैं, जैसे नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि मतलब फिजिकल मतलब आपको मारना पीटना, उसको हम फिजिकल एब्यूज कहते हैं। और वो दिखाई भी देता है अगर किसी के साथ फिजिकल एब्यूज हुआ है तो। मगर जब हम इमोशनल एब्यूज की बात करते हैं तो वो किसी को दिखाई नहीं देता है, अंदर ही अंदर विक्टिम को खाया जाता है ना, तो वो दूसरे टाइप होता है। फिर आता है आपका सोशल एब्यूज। सोशल एब्यूज मतलब मेनलैंड इंडिया में कई कई जगह पर जो बहुत ही अंदर रिमोट एरिया है वहां पर अभी तक भी ऐसे औरतें हैं जिसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है और किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, तो वो सोशल एब्यूज के अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका सेक्सुअल एब्यूज ना। तो हमारे इंडिया में मैरिटल रेप को अभी तक क्राइम नहीं माना जाता है, तो अगर कोई हस्बैंड कोई किसी वाइफ को मैरिटल रेप करता है तो हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में उसको सेक्सुअल एब्यूज के अंदर में बुक कर सकते हैं। लास्ट आता है आपका इकोनॉमिक एब्यूज। इकोनॉमिक एब्यूज मतलब जिसे मैंने आपको कहा मेनलैंड इंडिया में कई सारी जगह है जहाँ पर अभी तक औरतों को अपना बैंक अकाउंट भी खोलने नहीं दिया गया है
1: जी,
2: तो
1: जी।
2: इस तरह का मतलब सिचुएशंस है और उनको खर्चा पानी नहीं दिया जाता है, तो ये सब इकोनॉमिक एब्यूज के अंदर में आता है।
1: तो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा में केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं आते हैं बल्कि और भी बहुत सारे हिंसाएं आते हैं, जैसे यौन हिंसा, भावनात्मक हिंसा या आर्थिक हिंसा या कई तरह के और भी हिंसाएं हो सकते हैं। तो अगर किसी के साथ अगर ऐसी घटना या ऐसी हिंसा होते हैं कहाँ जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
2: जी, हमारे अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी के साथ भी इस टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो अपने अपने जो पास के पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर तवांग है वहाँ जाके वो डायरेक्टली आके अपना कंप्लेन कर सकते हैं। और जब वो कंप्लेन करते हैं तो हम जब वो वन स्टॉप सेंटर में आते हैं तो फर्स्ट हम उनका डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट

0: प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंगली, उसके बाद में हम उनको जेएमएफसी कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, वहां जाके डीएलएसए की मदद से उनको आगे की कार्रवाइयां किया जाता है।
1: क्योंकि हमारे समाज में लगभग शारीरिक रूप से जो हिंसा हुआ है उसी को ही सच माना जाता है, लेकिन अब सरकार ने हमें सुविधाएं दे रखी हैं कि किसी भी तरह के हिंसा आपके साथ अगर होते हैं तो आप आकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो अगर किसी महिला के साथ ऐसी ही घटना घटती है, अगर वो आकर आपके पास शिकायत दर्ज भी करते हैं, तो सरकार की ओर से और उस पीड़ित महिला को क्या क्या रिलीफ मिलते हैं?
0: जी, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम अपने DIR को फॉरवर्ड करते हैं जेएमएफसी कोर्ट में, तो वहाँ पर जो भी लीगल एड क्लिनिक में एडवोकेट है वो उनको मदद करते हैं। तो उसके बाद में अकॉर्डिंगली, मतलब उनका जो कितना सीवियर उनके साथ में वायलेंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग में उनको रिलीफ दिया जाता है। तो फर्स्ट आपको रिलीफ में आता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, जिसमें जो औरतें होते हैं, विक्टिम होते हैं, उनके जो एक्यूज होते हैं या रेस्पोंडेंट होते हैं, उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जाता है। तो वहां पर उनको वो फिजिकल वायलेंस या किसी भी तरह का जो फिजिकल वायलेंस या इकोनॉमिक वायलेंस जो भी, उसको रोक दिया जाता है। फिर सेकेंड आता है आपका रेसिडेंस ऑर्डर। रेसिडेंस ऑर्डर में क्या होता है, आपका एक महिला को जब वो घर से निकाल दिया जाता है, उसका हस्बैंड या किसी भी
1: कोई भी सदस्य घर के,
0: घर के सदस्य के द्वारा, तो वो रेसिडेंस ऑर्डर की मांग कर सकता है। फिर आता है आपका मॉनिटरी रिलीफ। वहाँ पर अगर उनके साथ में मतलब मंथली मेंटेनेंस नहीं देता है या फिर इकोनॉमिक वायलेंस हो रहा है, तो मेंटेनेंस के लिए वो प्रे कर सकती है। फिर कस्टडी ऑर्डर तो मेनली बच्चों के लिए होता है। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ या कोई भी सदस्य किसी भी महिला के बच्चों को लेने के लिए करता है, तो वो कस्टडी ऑर्डर के लिए मांग कर सकता है। और लास्ट है आपका कंपनसेशन ऑर्डर। तो इस एक्ट के अंदर में पीड़ित महिलाओं को कंपनसेशन भी दिया जाता है, जो कि होता है फिजिकल वायलेंस या इमोशनल वायलेंस के लिए दिया जाता है।
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, या हम जिसे पोश एक्ट 2013 भी कहते हैं, तो इसके बारे में मैं और हमारे श्रोताएं जानना चाहेंगे कि पोश एक्ट किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या जो ऑफिसेस में काम करते हैं वही महिलाएं आते हैं, या फिर घर में जो काम करते हैं, या घर में काम ही नहीं बल्कि किसी के घर में रहते भी है कोई, जब कोई शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में आते हैं तो उनके घर गांव में होते हैं, तो किसी रिश्तेदार के घर पर अगर वो रहती हैं, तो उनके साथ भी अगर कुछ ऐसा जो हैरेसमेंट होते हैं, तो क्या उन पर भी ये लागू होते हैं?
0: जी, शुक्रिया। फर्स्ट में पोश एक्ट का फुल फॉर्म आपको बताना चाहूंगी, POSH, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो यहाँ पर भले ही वर्क प्लेस सिर्फ लिखा है, ये एक्ट जो है, जैसे आपने मुझे पूछा डोमेस्टिक हेल्प के लिए लागू होता है कि नहीं, बिल्कुल ये एक्ट जो है डोमेस्टिक हेल्प के लिए लागू होता है। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, उनके लिए ये लागू होता है।
1: जैसे कि किसी के साथ ऐसी हिंसा या कोई हैरेसमेंट होते हैं, तो अगर वो किसी को शिकायत दर्ज करना चाहे भी तो थोड़ी सी खुलकर नहीं बोल सकते हैं, तो अगर शिकायत दर्ज करना चाहे तो किस तरह से करेंगे?
0: तो इस एक्ट के अंदर में ये भी कहा गया है कि किसी भी ऑफिसेस ना, किसी ऑफिसेस या फिर वर्क प्लेस में जहाँ पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो, 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो, तो वहाँ पर मैंडेटरी है कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाना है। तो उस कमिटी में आपका चार मेंबर होना है, और उस चार में से मैक्सिमम नंबर जो है, मतलब 50% से ज्यादा मेंबर जो होना है, विमेन होना है, जो विमेन रिलेटेड वर्क करता है, जो एनजीओस में है, उनको वहां पर अपॉइंट करना है। और जो इंटरनल कमिटी में है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में है, उनका नाम अपने अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड में उनको डिस्प्ले करना है, ताकि जो एम्प्लॉयज है उनको ये नॉलेज हो कि अगर उनके साथ में अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो तो वो किसके पास जाके कंप्लेन करना है। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो ऑफिसेस में होता है, तो उनका जो कंप्लेन है, फर्स्ट आपको IC मतलब इंटरनल कमिटी में जाके लॉन्च करना पड़ता है। फर्स्ट ये इंटरनल कंप्लेंट कमिटी हुआ करता था, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट इन 2016 इसको सिर्फ इंटरनल कमिटी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये कमिटी जो है सिर्फ कंप्लेंट तक ही सीमित नहीं है, इनका पावर इससे ज्यादा है, इसलिए अभी इनको हम इंटरनल कमिटी के नाम से जानते हैं। और अगर 10 से कम वाले जो ऑफिसेस है वो अगर कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाइज में आपका लोकल कमिटी होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको अप्रोच करके वो अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं।
1: जी जी सुनम जी, क्योंकि मैं हर बार ये कहती हूँ कि हम बहुत ही खुशनसीब लोग हैं, हमारे

0: यहाँ पर ऐसी चीजें बहुत ही कम ना के बराबर होते हैं, फिर भी इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना हमारे कर्तव्य है। और हर ऑफिस में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वहाँ पर एक इंटरनल कमिटी होना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि किसी भी महिला के साथ अगर ऐसी हिंसा होते हैं, हैरेसमेंट होते हैं, तो वो सीधे जाकर अपनी शिकायत कर सके। और मैंने ये भी सुना कि शी बुक्स पोर्टल नामक एक वेबसाइट है, तो इस बारे में आप हमें बताएं।
1: आजकल ऐसा होता है कि लोग कंप्लेन करने से, बाहर आने से उनको शाई फील होता है, घबराहट फील होता है, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है ना, एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो वहाँ में जो पीड़ित महिलाएं हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से अपने ऑफिस में, वो डायरेक्टली ऑनलाइन भी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, shebox.wcd.gov.in, यहाँ पर जाके वो डायरेक्टली अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर से जो भी उनका कंसर्न आईसीसी है या एलसी है, लोकल कमेटी है या इंटरनल कमेटी है, वो अपने कंप्लेन को टिकअप कर लेंगे।
0: जी जी, मतलब अगर किसी के साथ ऐसी हैरेसमेंट होते हैं, तो वो बिना किसी दूसरों को बताए ही अपने लैपटॉप से या अपने ही कंप्यूटर से वो इस पोर्टल को टाइप करते हुए अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं ना। और सोनम जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किसे कहते हैं और यह अधिनियम कितनी उम्र तक के बच्चों के लिए लागू होते हैं?
1: जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो है बच्चों के लिए, ये एक एक्ट है जो 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। आपने निर्भया केस तो जरूर सुना होगा, जो घटना हुआ था निर्भया केस, तो उसमें आपको जानकारी होगा कि वहाँ पे एक एक्यूज जो है वो जुवेनाइल था, जिसके होते उस सीवियर पनिशमेंट इतना नहीं मिला था, जिसके वजह से भी इस एक्ट को थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ा। तो उस केस के बाद से अब जो बच्चे हैं, जो 16 टू 18 इयर्स के बच्चे हैं, अगर वो हीनेस क्राइम करता है, हीनेस क्राइम मतलब जो 7 इयर्स से ज्यादा पनिशमेंट होता है जिसमें, अगर वो ऐसा क्राइम करता है तो उनको भी एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जैसे आपने हमको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में पूछा है, तो नॉर्मली ये बच्चों के लिए ही है, बच्चों के लिए है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर में दो तरह का बच्चा आता है, एक है आपका CNCP और दूसरा है CCL। CNCP मतलब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, एंड CCL मतलब चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ।
0: तो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ या फिर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इन दोनों में फर्क क्या है? और अगर किसी बच्चे से अपराध हो जाते हैं तो उन पर कार्रवाई कौन करेंगे?
1: CNCP जैसे कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, और CCL मतलब चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब जो 18 से नीचे बच्चे हैं वो अगर कोई क्राइम करता है तो उनको कहाँ पर, हम नॉर्मल कोर्ट में तो उनको हम लेकर नहीं जाएंगे, तो उनको हम लोग डील करते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो इस एक्ट के अंदर में ही दिया गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली होता है, नॉर्मल कोर्ट की तरह नहीं होता है। तो उसमें 3 मेंबर होता है, एक होता है प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, जो हमेशा अब वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारा JMFC मैम होता है यहाँ का, या सर होता है, वही प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होता है। फिर जो 2 बाकी मेंबर है वो किसी भी NGO का मेंबर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, या फिर सोशल वर्कर हो सकता है। तो अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर में देखा जाता है। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जो बच्चे होते हैं उनको जो है केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत होते हैं, जो डेस्टिट्यूट होते हैं, जिसका माँ बाप ने उसको एबेंडन कर दिया होते हुए भी, ऐसे तरह के बच्चे ना, तो उनको इसी एक्ट के अंदर में CWC ना, जैसे GGB दिया है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करके होता है, जहाँ पर एक चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर होते हैं, वो लोग उनको देखभाल करते हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका माँ बाप होते हुए भी उसको नहीं देख रहा है, नहीं देख पा रहा है, या फिर कोई बच्चा का कुछ आता पता नहीं है ना, और जो कोई बहुत ही पुअर फैमिली से या फिर ऐसे बिलोंग करता है, तो उनको CWC टेक केयर करते हैं।
0: जी, और जब हम बच्चों से संबंधित चर्चा कर ही रहे हैं, तो मैं साथ में ये भी जानूंगी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए आप।
1: जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें क्या होता है, आपका जो 6 to 14 इयर्स का बच्चा होता है उसको कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन देने का बात करता है ये एक्ट। किसी भी स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको हम एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, और किसी भी स्कूल, गवर्नमेंट रन स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को हम फीस नहीं ले सकते, किसी भी तरह का चार्ज नहीं ले सकता है, क्योंकि ये एक्ट कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होना है। और जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं उनके लिए भी ये होता है इस एक्ट के अंदर में कि उनका जो 25% होता है, 24% जो होता है वो

0: आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
1: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
0: RBI कहता है जानकार बनिए,
1: सतर्क रहिए।
2: मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ और 7104 FM मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है आधुनिक हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए सुनते हैं, विशाल शेखर के संगीत पर फिल्म अनजाना अनजाने से शेखर रवजानी और कैरलिसा मोंटेरो के आवाजों में।

कार्यक्रम में अगले गीत आइए सुनते हैं फिल्म गजनी से जावेद अली और सोनू निगम की आवाजों में। इस गीत को बोल दिया है प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया की स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स ओटीटी पे रजिस्टर करें, माय वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।

श्रोता अभी आपने इरशाद कामिल के रचे गीत पर फिल्म खट्टा मिठा से के और सुनिधि चौहान की आवाज में गीत सुना। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं प्रीतम के संगीत पर फिल्म सिंग इज किंग से। इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल ने।

हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स ओटीटी इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें, और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए,

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।

बागी फिल्म से श्रोता भी आपने अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर की आवाज में गीत सुना। इस गीत के रचयिता थे संजीव चतुर्वेदी और संगीत दिया था अमल मलिक ने। आइए कार्यक्रम को यहीं झलकते हुए सुनते हैं कुमार के रचे बोल पर फिल्म एक पहली लीला से उज्जय जसवाल की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत।

0: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स। काश एक चाबी होती।
1: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
0: सीकेवाईसी मतलब?
1: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
0: वाह, आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: शिवा एफएम से कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान के आवाज में। इस गीत को बोल दिया है साहिद कदरी ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग में आज आप सुनिए उस्ताद अमजद अली खान से सरोद वादन, राग है यमन।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अभी पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत उस्ताद अमजद अली खान से सरोद वादन, राग था यमन। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार 4:45 पर तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियम की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। अरुणाचल प्रदेश की राज्यसभा सांसद ताई तागाक ने दोईमुख और सागाली में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि फंड से 15-15 लाख रुपए देने की घोषणा की। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने विकसित अरुणाचल 2047 के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से नागरिकों, सामुदायिक आधारित संगठनों और गैर सरकारी संगठनों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए। अरुणाचल प्रदेश के ऑर्किड पर टैक्सोनॉमी, माइक्रो प्रोपेगेशन, कंजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सीटू ब्रीडिंग एंड इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज विषय के साथ 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला ईटानगर के डीके कन्वेंशन हॉल में जारी। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छिपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदानों को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इनमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को दिखाया है।
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है, इसलिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा है कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा है कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा प्रदान की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैठक की अध्यक्षता कर रही है। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक AI की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा है कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने AI को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ को हासिल किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे। एक रिपोर्ट।
2: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
3: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
4: आज तुमने राम और अल्लाह को

0: लूटने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
1: तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: अरुणाचल प्रदेश के राज्यसभा सांसद तायता गाग ने तिगदोती आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान दोईमुख और सागाली में मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए अपने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि MPLAD फंड से 15-15 लाख रूपये देने की घोषणा की। उन्होंने पापुमपारे उपायुक्त को प्रस्तावित मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि चिन्हित भूमि सभी प्रकार के कानूनी भार विवाद से मुक्त हो। सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद ने सेवा संकल्प अभियान के तहत शुरू किए गए आंगन मिलन सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। अरुणाचल प्रदेश सरकार के विकसित भारत अरुणाचल 2047 के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से नागरिकों, सामुदायिक आधारित संगठनों और गैर सरकारी संगठनों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य ऐसा अरुणाचल प्रदेश बनाना है जो विकसित, समृद्ध, आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो। श्री खांडू ने कहा है कि राज्य का लक्ष्य समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, जिसमें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कनेक्टिविटी, कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता, स्वदेशी विरासत, पर्वतों और नदियों का संरक्षण भी शामिल है। नागरिक अपने सुझाव समर्पित विकसित अरुणाचल 2047 पोर्टल विकसित अरुणाचल 2047.in के माध्यम से 31 अक्टूबर 2026 तक जमा कर सकते हैं। इन सुझावों की समीक्षा करते हुए वर्ष 2047 के लिए राज्य के विजन दस्तावेजों को अंतिम रूप देते समय इन्हें ध्यान में रखा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के ऑर्किड पर टैक्सोनॉमी, माइक्रो प्रोपगेशन, कंजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सीटू ब्रीडिंग एंड इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज विषय के साथ 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला ईटानगर के डीके कन्वेंशन हॉल में जारी है। 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन राज्य वन अनुसंधान संस्थान चिंपू ईटानगर द्वारा अरुणाचल प्रदेश जैव विविधता बोर्ड, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के क्षेत्र केंद्र ईटानगर और जीवी पंत के सहयोग से किया जा रहा है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहब्बत के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा है कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूल सकता। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: देश आज भारतीय वायुसेना की 54वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवार को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में शामिल नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के युद्ध अभियानों की भी याद दिलाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: दिस इज

नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के इंटरव्यू प्रोग्राम फार्म एंड होम पर। मैं जुलेखा टोपीवाला, आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से। आज हम बात करने जा रहे हैं

0: एक्वाकल्चर और फिश फार्मिंग के एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अक्सर हम मछलियां तो पौंड या पानी में छोड़ देते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू होती है उसके बाद, पानी की क्वालिटी, फीड मैनेजमेंट और हेल्थ को कैसे संभाला जाए। इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं कृषि विज्ञान केंद्र पंपोली ईस्ट कामेंग से डॉक्टर विपिन मिश्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके आज के शो में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: तो सर, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट का आम तौर पर क्या मतलब है और ये किसी भी फार्मर्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
1: मैडम, पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट जो है वो कवर करता है ऑल द प्रोसेसेस, सारी प्रक्रियाएं जो हमारे किसान भाई मत्स्य बीज का संचयन कर लेते हैं अपने तालाब में, स्टॉकिंग कर लेते हैं, चाहे वो आपका स्पान हो, फ्राई हो या फिंगरलिंग हो, उसके बाद में जितनी भी प्रक्रियाएं आती हैं वो सब पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट के तहत कवर्स होती हैं। ये सारा उसके अंतर्गत आती हैं और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि नॉर्मली किसान क्या होता है कि सीड स्टॉकिंग कर लेते हैं, उसके बाद अपने मत्स्य तालाब का, अपने मत्स्य फार्म का ध्यान नहीं देते हैं। उससे क्या होता है, उनका प्रोडक्शन लॉस होता है, अच्छा सर्वाइवल नहीं मिलता है, जितना उन्होंने निश्चित संख्या में मछलियों की स्टॉकिंग की रहती है, संचयन किया रहता है, उतना सर्वाइवल नहीं मिलता है, उसमें मृत्यु दर काफी बढ़ जाती है और अल्टीमेटली हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता है। इसलिए ये हमारा पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट है, संचयन के उपरांत प्रबंधन इसको हिंदी में बोलेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे।
0: पॉन्ड्स में वाटर क्वालिटी पैरामीटर जैसे कि पीएच, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए डेली या वीकली बेसिस पर किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए।
1: जी मैडम, बहुत जरूरी प्रश्न आपने किया हमारे किसान भाइयों के लिए। नॉर्मली हमारे किसान भाई इन सब चीजों का ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वाटर क्वालिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं, जैसे हम एज ए ह्यूमन बीइंग अपने आसपास एक क्लीन एनवायरनमेंट चाहते हैं, वैसे जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक मछलियां जो हैं हमारी, वो भी अपने सराउंडिंग को अच्छा चाहती हैं, और अच्छा सराउंडिंग होगा तो जैसे मनुष्य का माइंडसेट अच्छा रहता है अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट पे, वैसे हेल्दी एनवायरनमेंट में हमारी मछलियों का भी जो माइंडसेट है, बॉडी का हार्मोनल बैलेंस है वो ठीक रहता है, स्ट्रेस नहीं होता है उनको, और उनकी जो पैदावार है, बढ़वार है, जो उनकी ग्रोथ है वो अच्छी होती है। इसके तहत जो हमारे मुख्य बिंदु हैं वो है, एक पीएच है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है और टेम्परेचर है। इन चीजों को अगर हम मुख्य रूप से ध्यान देते हैं तो हमारी मछलियों की ग्रोथ अच्छी होती है।
0: तो जैसे कि आपने डिजॉल्व ऑक्सीजन भी बोला, कभी कभी डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाए या पानी का रंग बदल जाए तो फार्मर को तुरंत क्या इमरजेंसी एक्शन लेनी चाहिए।
1: जी मैडम, डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण घटक है हमारे एक्वाकल्चर में, अगर ये कम हो जाता है तो उसका लक्षण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उसको कैसे किसान भाई हमारे पहचानेंगे कि डीओ हमारे तालाब में कम हो गई, क्योंकि सबके पास मशीन नहीं होती है तुरंत चेक करने के लिए, उसको जो अच्छे फार्मर हैं वो मशीन रखते हैं, वो देखते रहते हैं, नहीं तो कैसे विजुअली कैसे वो देख सकते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। जब डीओ कम होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन लेवल तालाब में कम होता है नॉर्मली, तो मछलियां क्या करती हैं, वो सरफेस पे आ जाती हैं, तालाब की सतह पर आ जाती हैं और वो आके वहां पे इनगल्प करती हैं, अपना अपर कुलम खोलती हैं बार बार, और उनको सफोकेशन होता है, जो उनका बॉडी का बैलेंस है वो सीधा ना होके वो हैंगिंग मोड में आ जाती हैं तालाब पर सरफेस पर, और बार बार मुंह खोलती हैं, अपर कुलम खोलती हैं, उससे पता चलता है। और जब डीओ कम होने लगती है और उसमें उनका डीओ कम होने लगती है तो हमारे किसान भाइयों को क्विक एक्शन के लिए सबसे पहले, अगर उनके पास मोटर है, डीजल पंप है या इलेक्ट्रिक पंप है या सोलर पंप है, तो उसके थ्रू उसी पानी को हमको तालाब में रिसाइकिल करना है, तालाब के ही पानी को लिफ्ट करना है और उसी तालाब में छोड़ना है। तो उससे क्या होगा कि एयर मिक्स हो जाए, उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी इन्वायरमेंट से और मछलियों को हमारे क्विक रिलीज, पहली चीज। दूसरी, अगर उनके पास नहीं है पंप की अवेलेबिलिटी, नहीं, कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, कभी किसान भाई हमारा परचेज नहीं कर पाता है उसको, देन क्या करना है उसमें, फिर मैनुअली आपको बंबू लेके बंबू से उस पानी को पीटना है।
0: अच्छा।

0: उस पानी को जब हम पीतेंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी लेयर ब्रेक हो जाएगी और हलचल मचेगी पानी में, और एयर जो इन्वायरमेंट की है वो उसमें मिक्स होगी और मछलियों को हमारे आराम मिल जाएगा।
1: और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो है, फिश को कितना फीड किया जाए, क्या ये रेशियो भी कुछ महत्वपूर्ण है, फिश को कितना फीड किया जाए और इसको कैसे क्या कैलकुलेट करें फिश के ग्रोथ को?
0: इसके ग्रोथ के लिए नॉर्मली हम जो मछली स्टॉक किए रहते हैं, जो मत्स्य बीज का संचयन करते हैं, उसका 4-6% उसके बॉडी वेट का, उसका 4-6% हम फीड के रूप में मछलियों को अपने दे। उसमें हम क्या करते हैं, उस डोज को स्प्लिट कर लेते हैं दिन में। दिन में हमको दो बार देते हैं, फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में कब देते हैं हम? ड्यूरिंग डॉन। डॉन एक शब्द है, बोलते हैं जब हमारा सूर्योदय होता है, डॉन के समय में, या आफ्टर डॉन कह सकते हैं कि जब सूर्योदय हो जाए तो उसके बाद देना है, और 8 बजे सुबह के पहले दे दें। और शाम के समय जो हमको देना है ड्यूरिंग डस्क, मीन्स डस्क के पहले दे देना, जो सूर्यास्त है सूर्यास्त के पहले हमको दे देना है, लगभग उस टाइम में या उसके पहले हम सूर्यास्त के टाइम में दे सकते हैं मछलियों को, वो अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि हमारा टाइमिंग फिक्स रहता है और उसी टाइम में मछलियां खाने के लिए आती। अब आप बात करेंगे कि हम 4-6% तो आपने बता दिया सर, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमने फिंगरलिंग स्टार्ट किया हमने 6000 फिंगरलिंग या 10000 फिंगरलिंग, तो जब हम उसको स्टॉकिंग के लिए ले आते हैं तो फर्स्ट में हमको क्या करना चाहिए, पहले हमको करना चाहिए कि उसका जो हमारा बीज है, मत्स्य बीज है, उसमें कम से कम 10 का या 20 का हमको एवरेज वेट ले लेना है उसका। एक मछली का लेंथ वेट हम लेंगे तो एवरेज पता चल जाएगा, इतनी लंबी है, इतनी वजन की है वो। 10 मछलियों का हमने वेट ले लिया सपोज, 10 एक मछली का 5 ग्राम है तो 10 मछली का आपका 50 ग्राम हो गया एवरेज, मीन्स 5 ग्राम की एक मछली हो गई, और हमने 10000 स्टॉक किया है, नंबर 10000 फिंगरलिंग का है, तो वो 10000 को हम 5 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो 50000 ग्राम, 50000 ग्राम हो गया
1: जी।
0: अब इसका इस 50000 ग्राम को हम मीन्स ये केजी में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 50 केजी, 1 किलो में 1000 ग्राम हो गया तो 50 केजी हो गया। 50 केजी का हम 4% निकाले, 50000 ग्राम का हम 4% निकाल लेंगे, 50000 ग्राम को हम 4% जब निकालेंगे तो लगभग 1/2 केजी आया
1: जी।
0: उस टाइम में, ठीक है, तो उस टाइम जो 1/2 केजी है हमारा, वो 1/2 केजी के आधी डोज को मीन्स 250 ग्राम हमको मॉर्निंग में फीड कराना है और 250 ग्राम हमको इवनिंग में फीड कराना है।
1: जैसे कि मछलियां जब ग्रोथ करती है तो क्या धीरे धीरे उनका फीडिंग क्वांटिटी और फीडिंग फ्रीक्वेंसी भी चेंज करना चाहिए जैसे जैसे उनका ग्रोथ होते रहेगा, या जैसे आपने बोला वैसे ही हमेशा रहेगा?
0: जी मैडम, रेशियो तो यही रहेगा, जैसे हमारा जब बच्चा छोटा होता है
1: जी
0: तो उसको फीड हम कम देते हैं।
1: हाँ।
0: फीड कम देते हैं, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो फीडिंग ज्यादा करता है, तो इसी स्टाइल में हमारी मछलियों को भी जरूरत होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हर 15 दिन में हम नेटिंग करते हैं, एक मॉक नेटिंग करते हैं। वो नेटिंग इसलिए नहीं करते हैं कि हमको हार्वेस्ट करना है, वो नेटिंग इसलिए करते हैं कि उससे हम फीडिंग का कैलकुलेशन कर लेंगे, मछलियों की हेल्थ के बारे में भी हमको जानकारी मिल जाएगी, और मछलियां कैसे बढ़ रही हैं वो भी दिखेगा, कोई रोग बीमारी तो नहीं लग रही है, और उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, एक तरीके से उनका जिम हो जाता है। तो इसलिए जैसे 15 दिन के बाद मछली बढ़ेगी, निश्चित रूप से आप फीडिंग कराएंगे तो मछली की ग्रोथ होगी, पर अभी उसका टोटल वजन आया 50000 ग्राम। 15 दिन के बाद हो सकता है कि हमारी कुछ मॉर्टिलिटी हो गई हो, 2%, 4%, वो भी हमारा निकल जाएगा, फीड वेस्ट नहीं जाएगा, और जितनी मछली है उसको फिर हम एवरेज जो वेट आएगा 10 मछली 20 मछली का लेंगे, और एवरेज एक नंबर है स्टॉक हमने किया है उससे मल्टीप्लाई करके, और फिर 4% उसको निकाल के और उसके हिसाब से हम डोज बढ़ाते, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, डोज हमको बढ़ाते जाना है। डोज का जो पता लगाना है वो जब आप नेटिंग करेंगे, जाल चलाएंगे तो मछलियां निकलेंगी, उन मछलियों से ही आपको पता चलेगा।
1: अच्छा
0: जी,
1: और मार्केट में फ्लोटिंग फीड और सिंकिंग फीड दोनों उपलब्ध है, पोस्ट स्टॉकिंग के दौरान हमें कौन सा बेहतर है और फीड वेस्टेज को कैसे रोका जाए?
0: देखिए मैडम, आपने जो प्रश्न किया वो आप फ्लोटिंग फीड और सिंकिंग फीड का किया। नॉर्मली फ्लोटिंग फीड बेटर माना जाता है, फ्लोटिंग फीड बेटर माना जाता है क्योंकि मछलियां जो सरफेस फीडर हैं वो आके ऊपर ही उसको अपने

0: मुंह से कैच कर लेती हैं और पकड़ लेती हैं, और सरफेस फीड की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी मानी जाती है। सरफेस फीड, जो सरफेस फीड है, जो आपका फ्लोटिंग फीड है, उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, इसीलिए उसको हम जो है प्रिफर करते हैं। सिंकिंग फीड नॉर्मली जो हमारा कैट फिश है, जो कैट फिश है, सिंगी हो गया, मांगुर हो गया, या जो हम झींगा पालन हमारे मत्स्य किसान करते हैं, उनके लिए सिंकिंग फीड आवश्यक होता है। बाकी मछलियों के लिए फ्लोटिंग फीड बेटर माना जाता है।
1: और फिश की हेल्थ और वेट गेन को सही तरीके से ट्रैक करने के लिए बायोमेट्री या स्कैल्पिंग करने का सही समय और तरीका क्या है?
0: सबसे पहले तो हम समझेंगे कि फिश बायोमेट्री होती क्या है। ये स्टेटिस्टिकल हमारे डाटा है, जैसे हमारा लेंथ है, वेट है और पॉपुलेशन डायनेमिक्स है, उसको हम इस फिश बायोमेट्री के तहत स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हमको जानना है, जो हमारे किसान भाइयों को जानना चाहिए, कि उन्होंने जो तालाब में मछली डाली है उसका लेंथ और वेट एवरेज कितना है, उनको मालूम होना चाहिए शुरू में डालते समय। और जैसा कि हमने पहले अभी बताया कि पीरियाडिकल नेटिंग करनी है, पीरियाडिकल नेटिंग एटलीस्ट 15 दिन में करनी है, नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो हमको एक महीने में तो आवश्यक रूप से करनी ही चाहिए। तो जो ये फिश बायोमेट्री है उसमें पता चलती है, उसमें लेंथ क्या है मछली का, वजन क्या है मछली का, दोनों में जो एक लेंथ वेट का एक रिलेशन होता है स्टैंडर्ड, वो है कि नहीं है, वो चीज किसान को पता चलती है, उसी पे फीड का कैलकुलेशन होता है। नहीं तो फीड का एक्चुअल पता नहीं चल पाता है। सपोज फीड की जरूरत है 5 केजी, हमारा किसान भाई दे रहा है 10 केजी फीड, तो मछली तो खाएगी 5 केजी फीड, क्योंकि सबका खाने का तो एक लिमिट है, हर चाहे इंसान है चाहे जानवर है, वो पेट भर ही खाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं खाएगा। उसके बाद जो फीड जाएगा हमारे तालाब में वो राटिंग होगी उसकी, और वो जो ऑक्सीजन हमारे मछली को मिलनी चाहिए वो उसके अपघटन में चली जाएगी, उसके डिग्रेडेशन में चली जाएगी, तो ऑक्सीजन डिप्लेशन का खतरा बना रहेगा पहली चीज। दूसरा, अमोनिया टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, नाइट्रोजिनस जो प्रोटीन होते हैं उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, वो नहीं यूज होगा तो वहां पे अमोनिया का बढ़ेगा, नाइट्रोजन गैसें बढ़ेंगी, H2S बढ़ेगा, तो नॉक्सियस गैसेस बढ़ेंगी, हैजर्ड्स कंपाउंड उसमें बढ़ सकते हैं, तो मछलियां हमारी बीमार होने लगती हैं। इसलिए भी फिश बायोमेट्री का अध्ययन बहुत आवश्यक हो जाता है, और इसके लिए है कि हमको जाल चलाना ही चलाना है 15 दिन में। अच्छा जो चाहिए प्रोडक्शन तो 15 दिन में, अगर 15 दिन में नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 1 मंथ में एक बार तो हमको चलाना ही चलाना है, उससे जो हमारा लेंथ वेट है मछली का वो पता चलता है और फीड की क्वांटिटी पता चल जाती है। दूसरी चीज आपने पूछा कि सबसे टाइमिंग क्या है
1: जी,
0: इसका बेटर टाइमिंग क्या है ना। टाइमिंग के लिए जो कूलर मींस पीरियड होता है, कूलर पीरियड मींस मॉर्निंग आवर, वो बेटर माना जाता है, वो वही सबसे अच्छा होता है, और उसमें हमको मॉर्निंग आवर में ही जाल चला के, और इनकी देखभाल के लिए जो हमको जाल चलाना है, मॉनिटरिंग के लिए जो जाल चलाना है वो मॉर्निंग आवर में ही चलाना है। और कुछ चीजें मैं आपको आपके साथ साझा करूंगा हमारे किसान भाइयों के जानकारी के लिए, कि जो भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, चाहे वो जाल है या हमारा स्केल है या बेइंग बैलेंस है, वो नीट एंड क्लीन होना है। जाल ऐसा नहीं कि दूसरा फार्मर ने चलाया था वहां से हम मांग के लाए अपने तालाब में चला रहे, ये गलत प्रैक्टिस है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसको करने के लिए सपोज हमारे पास जाल नहीं है, हम कहीं से कस्टम हायरिंग सेंटर्स होते हैं वहां से ले सकते हैं रेंट पे, या किसान भाइयों के पास पूल होता है वहां से ले सकते हैं, या किसी जो मात्स्यिकी केंद्र है हमारा स्टेट डिपार्टमेंट वहां से भी हम ले सकते हैं, या अपना रखे हैं, तो जाल को हर बार चलाने के बाद में उसको डिसइंफेक्टेंट करना है। पोटेशियम परमैंगनेट एक दवाई होती है, उसका घोल बना के उसमें डिप करना है, और उसके बाद उसको सनड्राई करना है प्रॉपर। सनड्राई के बाद ही हमको अपने तालाब में उसको यूज करना है। ये बायोसिक्योरिटी मेजर्स के अंतर्गत आता है। वो जाल अगर डिसइंफेक्टेंट रहेगा, सपोज हम कहीं कोई किसान ने चलाया है उसके यहाँ कोई डिजीज लगी हुई है, बैक्टीरियल डिजीज, तो वो रोग हमारे तालाब में भी आने के लिए चांसेस होते हैं। इस तरीके से उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, और हमारे मछली

0: में रोग लगने की संभावना नगण्य हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये चीज है, जो इक्विपमेंट्स है वो डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए, उस पे डिसइंफेक्ट किया हुआ होना चाहिए। और जैसे स्केल है, बेइंग बैलेंस है, या जो हम ग्लव्स यूज कर रहे हैं उसको मॉइस्ट होना है, थोड़ा वेट कंडीशन में होना है कि हमारे मछलियों के लिए ये आरामदायक रहे। और दूसरी चीज कि अगर हम मछलियों का वजन ले रहे हैं, एक और चीज आपको मैं बताऊंगा, मछलियों का वजन ले रहे हैं या लेंथ ले रहे हैं, तो ये सारी प्रक्रिया कोशिश करनी है कि विद इन 30 सेकेंड हमको पूरी कर लेनी है। उससे ज्यादा अगर समय लग रहा है तो मछलियां स्ट्रेस में आती हैं, इसलिए इसको भी अवॉइड करना है। और जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं इसके लिए भी हमको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है।
1: और जैसे कि पोस्ट स्टॉकिंग स्टेज में आमतौर पर कौन सी बैक्टीरिया या फंगल डिजीज देखने को मिलती है और उनका शुरुआती लक्षण क्या है?
0: मैडम, डिजीज पे आप बात कर रही हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि एक्वा कल्चर में जो सबसे मेजर बायोलॉजिकल चैलेंज है वो डिजीज है, मछलियों का रोग है, ठीक है। और इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत सारा लॉस हो जाता है। लगभग अगर हम अनुमानित इसका डेटा शेयर करें तो 10-15% प्रोडक्शन लॉस हमारे किसान भाइयों को इससे हो जाता है हर साल। उसको हमको बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले आपको क्वारंटाइन मेजर्स फॉलो करने हैं इससे बचाने के लिए। हम स्पेसिफिक डिजीज में न जाके पहले किसान भाइयों को प्रिवेंटिव मेजर्स बता देते हैं। सबसे पहले उनको जरूरी है कि वो जो हमारी बायोसिक्योरिटी है उसको फॉलो करना है। बायोसिक्योरिटी हमने बताया कि क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी है, जाल इक्विपमेंट्स जो भी यूज करने हैं उसको हमको डिसइंफेक्ट करके अच्छे से सुखा के तब यूज करना है। और जो हमारे मछलियां बाहर से आ रही हैं उनको क्वारंटाइन करना है। क्वारंटाइन मेजर से एक होता है कि हम मछलियों को स्टॉक करने से पहले हमारे पास क्वारंटाइन टैंक होता है, 1-2 दिन उसमें रखेंगे, उसमें कुछ हमारे केमिकल्स हैं, कुछ दवाइयां हैं, उसको यूज करते हैं 1-2 दिन कि कोई रोग बीमारी उनके साथ अगर आया है तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, फिर उसको अपने तालाब में हमको डालना है। उससे मॉर्टेलिटी की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, एक तो ये है। दूसरा ये है कि डिजीज को और कम मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रेस लेवल को अगर कम रखा जाए, क्योंकि डिजीज का इन्वायरमेंट के साथ एक गहरा रिश्ता है। अगर आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इन्वायरमेंट का और स्ट्रेस का, तीनों का एक रिलेशनशिप है। ये तीनों अगर इक्विलिब्रियम स्टेज में है तो बीमारी नहीं लगती, लेकिन इन तीनों में चाहे वो ह्यूमन बीइंग है या लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी है या हमारी मछलियां हैं, तो तीनों का इक्विलिब्रियम जब गड़बड़ होता है तो उस टाइम में क्या होता है कि एक हावी हो जाता है उस पे, जो हमारे डिजीज के एजेंट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो हावी हो जाता है। इसके लिए क्या करना है हमको, जो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन है, पीएच है और टेम्परेचर है, इसके लेवल को स्टेबल रखना है। ये हमारे किसान भाइयों की जिम्मेदारी हो जाती है।
1: मॉनसून या एक्सट्रीम गर्मी के मौसम में पॉन्ड्स का वाटर लेवल, टॉक्सिसिटी और सडन वेदर चेंजेस को मैनेज करने के लिए क्या कोई स्पेशल प्रिकॉशन लेनी पड़ती है आप लोगों को?
0: जी मैडम, लेनी पड़ती है। सबसे पहले आपको प्रिकॉशन के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज अपने किसान भाइयों को बताऊं। हम लोगों ने ये सारी चीजें तो डिस्कस कर ली कि मछलियां स्ट्रेस में आएंगी तो उनमें रोग हो जाएगा, लेकिन हमारे किसान भाई जाने कैसे कि उनको स्ट्रेस है, कैसे जानेंगे? उस पे हम थोड़ा सा आपके साथ जानकारी साझा करने चाहेंगे। सबसे पहले तो है एपेटाइट, भूख। जो हम खाना दे रहे हैं सुबह शाम में, अगर हम उनको भोजन करा रहे हैं, जो एक नियमित हमारी प्रक्रिया है भोजन देने की, उसको कराने के लिए जब हम जाते हैं और वो भोजन सही ढंग से नहीं कर रही है, क्योंकि अगर सेम टाइम में हम भोजन दे रहे हैं, सेम टाइम में उनको दे रहे हैं, फीडिंग करा रहे हैं, टाइमिंग हमारी सेम है और फीड अच्छा है, तो मछलियां क्या करती हैं, एक इंटरेस्ट के साथ में, एक इंथुजियाज्म के साथ में वो दौड़ के आती हैं खाने के लिए। अगर मछली हमारी ऐसा नहीं कर रही है तो ये पहला लक्षण है कि हमारी मछली स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में है, बीमार नहीं भी हो सकती लेकिन कुछ अनकंफर्ट है उसको, वहां पे हमको वॉचफुल होना है। दूसरा, बिहेवियर। अगर मछली स्विम कर रही है, कोई कंकड़ मारा किसी ने या किसी

0: ने कुछ किया और एक्टिव नहीं है मछली, कोई हलचल नहीं कर रही है, तो इट मींस कि मछली हमारी हेल्दी कंडीशन में नहीं है। तीसरा है अपीयरेंस। अगर हम मछली सपोज निकालते हैं, फेंकने वाला जाल होता है, कास्ट नेट है, हमको देखना है बड़ा ड्रैग नेट नहीं चला पा रहे हैं, मैन पावर की कमी है, तो फेंकने वाले जाल से देखेंगे। मछली को निकाल के अगर हम देख रहे हैं, उसका अपीयरेंस अगर सही नहीं, अपीयरेंस जैसे आदमी को देख के पता चल जाता है ना कि ये नॉर्मल है इस समय या अब नॉर्मल है
1: जी,
0: ये हेल्दी में कंडीशन में है या बीमार लग रहा है, देख के पता चल जाता है ना आदमी का कि ये बीमार लग रहा है, तो मछली को भी देख के हमको पता चल जाता है कि मछलियां हमारी बीमार हैं। उसके लिए क्या करना है, उनका नॉर्मल आई कलर क्लियर होना है, जो बॉडी कलर है वो क्लियर होता है, साइनी होता है, स्केल जो है वो स्मूथ होती है, फ्लैटेंड होती है, ठीक है, और उनका जो फिन्स है वो बॉडी से एकदम मीन्स एक्टिव मोड में दूर रहते हैं, और जो हमारी मछलियां बीमार सी रहती हैं वो सुस्त रहेंगी, उनका जो फिन्स है वो भी थोड़ा डाउन पड़ा रहे। तीसरा है ब्रीदिंग, जो सांस लेती हैं मछलियां हमारा, उनके अपरकुलर मूवमेंट को अगर आप देखेंगे वो अगर एबनॉर्मल है मीन्स रैपिड ग्रेस्पिंग कर रही है, तो हमको ये जानना है कि मछली हमारी स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, ये साइन है अनहेल्दी, ये साइन है हमारे कि इसे देख के हम पता कर लेते हैं कि मछलियां हमारी हेल्दी हैं या नहीं है। ऐसी चीजें अगर हैं, सारी चीजें सही पोजीशन में है, जैसा हमने बताया स्केल सही दिख रहा है, कलर सही दिख रहा है, अच्छे से खा पी रही है, अपीयरेंस सही है, बिहेवियर उसका सही है, तो ये हेल्दी कंडीशन में है। अगर सारी चीजें चेंज है, बिहेवियर चेंज है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है मीन्स अपरकुलर मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, और कभी कभी फिजिकल वुंड्स दिख जा रहे हैं शरीर पर, या कलर फेड है, तो हमको उस पे अलर्ट होने की जरूरत है, और अच्छे से हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह हमको लेनी चाहिए, या अगर खुद से हम जान पा रहे हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अकॉर्डिंगली हमको प्लान करना।
1: पॉन्स में जैसे कि जब हम लोग ये करते हैं तो पॉन्स के नीचे में गंदगी बैठ जाती है, उसका कोई सोल्यूशन है पॉन्स के नीचे की गंदगी को हटाने का?
0: जी मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि हमने बताया कि पॉन्ड में गंदगी बैठती क्यों है, सबसे पहले तो हम इस पे चर्चा करेंगे। जैसा हमने बताया हमारे किसान भाई रूल आउट करते हैं, जो कुछ थम्स रूल है हमारे एक्वाकल्चर के, उनको किसान भाई हमारे रूल आउट कर देते हैं। जैसे हमने बताया कि 15 दिन में नेटिंग आपको करनी है, अब वो नेटिंग नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा कि हमारा कितना स्टॉक अवेलेबल है हमारे तालाब में, और उसको बाईपास करके आप फीडिंग कराते जा रहे हो, मछलियों को जरूरत है 2 केजी की, आप दे रहे हो 3 केजी, तो जो 1 केजी एक्सेस फीड है वो कहां जाएगा? अल्टीमेट वो आपके तालाब में इकट्ठा होगा, बॉटम में वो वहां सड़ेगा, उस पर बैक्टीरिया डेवलप होंगे, फंगस डेवलप होंगे, जो ऑक्सीजन के साथ कम्पीट करेंगे, जो ऑक्सीजन हमारी मछलियों को मिलना चाहिए उसके साथ कम्पीट करेंगे, एक तरफ तो ऑक्सीजन डिप्लेट करेंगे वो, दूसरी तरफ जो सराउंडिंग है उसको गंदा करेंगे, और मछलियां हमारी फिर से बीमार होने की कंडीशन में आ जाए, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले वो हो ही ना, तो हम पीरियडिकल नेटिंग करके मछलियों की जो एक्चुअल संख्या है, जो नंबर है, उसको कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही फीड कराएंगे, पहली चीज ये है। दूसरा चीज फीड एडजस्टमेंट, सीजन के हिसाब से भी हमारी मछलियों को जो फीड दर है वो कम होती रहती है, एक तो साइज के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन सीजन के हिसाब से जो इनका फीडिंग का अमाउंट है वो भी घटते बढ़ते रहता है। उस पे हम कहना चाहेंगे कि जो हमारा गर्म दिन है, किसान भाई इस टॉपिक मीन्स इस विषय पर ध्यान से सोचना है हमारे किसान भाइयों को, गर्म दिन में मछलियां ज्यादा खाती हैं, क्योंकि मछली कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, उसका सीजन के साथ गहरा संबंध होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, BMR है, वो बढ़ता है, तो फीडिंग का जो उनका डिमांड है वो बढ़ा हुआ होता है उस टाइम में, तो उस टाइम में जो मछलियों को भोजन की आवश्यकता है वो ज्यादा होती है, तो उसके लिए भी उस टाइम हमको अलर्ट रहना है। एक तो पीरियडिकल नेटिंग है, दूसरा जितना फीड दे रहे हैं वो पता चलता है, जैसे आपने बात किया था कि कौन सा फीड बढ़िया है, आगे में बात किया था आपने कौन सा फीड बढ़िया है कि हमारा फ्लोटिंग फीड या सिंकिंग फीड, तो फ्लोटिंग फीड इसलिए भी यहां बढ़ जाता है, उसकी महत्व बढ़ जाता है कि वो दिखता है कि हमने कितना फीड डाला सरफेस पे, और वहां

खड़े रहेंगे तो कितना कंज्यूम किया हमारी मछलियों ने, कितना उस कितना मछलियों ने उपयोग किया वो दिख जाता है। अगर बचा हुआ है फीड नहीं ले रही है थोड़ी देर बाद, तो हमको फीडिंग वहां पे स्टॉप करना। अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो वो फीड हमारा वेस्टेज जाएगा और तालाब में बैठेगा, बाद में सिंक करेगा वो, और वो वहां पे राटन होगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा एक तरीका है कि अगर सपोज हम रेडीमेड फीड नहीं दे रहे हैं तो मछलियों को हमको क्या देना है। मछलियों को फीडिंग में नॉर्मली हम देते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स और प्रोटीन का सोर्स और कुछ मिनरल मिक्सचर्स। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के लिए जो है हमारा वो राइस पॉलिश आता है, बेस्ट माना जाता है। राइस पॉलिश चावल का पॉलिश होता है, वो मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाता है हमारे किसान भाइयों को। और केक, आयल केक, वो आपका मस्टर्ड आयल केक हो सकता है, आपका ग्राउंडनट आयल केक हो सकता है, सोयाबीन आयल केक हो सकता है, कोई भी केक हमको लेना है। और इसका जो रेशियो है, जितना डोज की रिक्वायरमेंट है 4-6% के हिसाब से, उसका जितना कैलकुलेशन आ रहा है उसका 50% हम राइस पॉलिश लेंगे, 50%

0: अवेलेबल हो जाता है हमारे किसान भाइयों को। और केक, आयल केक, वो आपका मस्टर्ड आयल केक हो सकता है, आपका ग्राउंडनट आयल केक हो सकता है, सोयाबीन आयल केक हो सकता है, कोई भी केक हमको लेना है। और इसका जो रेशियो है, जितना डोज की रिक्वायरमेंट है 4-6% के हिसाब से, उसका जितना कैलकुलेशन आ रहा है, उसका 50% हम राइस पॉलिश लेंगे, 50% आयल केक लेंगे। और इसको हम भिजा देंगे, पहले देने के थोड़ी देर पहले हम इसको 10 मिनट 15 मिनट पहले भिजा लेते हैं, जैसे आटा गूंथते हैं हम रोटी बनाने के लिए, ऐसे इसकी डोब बना लेते हैं, लोई बना लेते हैं, और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के हम मछलियों को खिला सकते हैं। दूसरा, अगर उसमें ज्यादा मेहनत लग रही है हमारे किसान भाई को, उसका फिश पॉन्ड ज्यादा है, टाकी हुई मछलियों की संख्या ज्यादा है, तो उसके लिए डॉब बना के, छोटी छोटी डॉब बना के उसको हम एक ट्रे में, उसको हैंगिंग मेथड बोलते हैं, वो ट्रे में हमको उसको रख देना है, एक बम्बू के सहारे से उसको हमको लटका देना है तालाब में, और मछलियां आके वहां से खा लेती हैं। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम सुबह सपोज हमने फीड दिया, शाम को देने के लिए हम फिर गए, तो शाम को जब देने जाएंगे फीड को, अगर उस ट्रे में बचा हुआ है फीड, तो शाम की डोज को हमको कम कर देना है या कट कर देना है। अगर फीड कम है, फीड खत्म हो गया है पूरा, तो मीन्स सेकेंड हाफ में या सेकेंड डोज में हमको उसको बढ़ा देना है। तो ऐसे हम डोज को रेगुलेट करते रहते हैं, ना हमारा वेस्टेज जाएगा और ना कम पड़ेगा। एट लिबिडम फीडिंग इसको बोलते हैं, मतलब जितनी जरूरत है मछलियां हमारी उतनी खाती हैं।
1: और एक क्वेश्चन ये भी है कि पार्शियल हार्वेस्टिंग करने का सही तरीका क्या है, इससे क्या बाकी बची हुई फिश की ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है?
0: सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं
1: जी।
0: कुछ मछलियों की ग्रोथ अच्छी होती है, या किसी किसी तालाब में हो सकता है कि जैसे हम कंपोजिट फिश कल्चर जब करते हैं या कार्प पालन जब हमारे किसान भाई करते हैं, तो उसमें तीन प्रकार की मछलियों का संचयन किया जाता है। एक होता है सरफेस फीडर, एक होता है कॉलम फीडर और एक होता है बॉटम फीडर। तो तीनों प्रकार की मछलियों में हो सकता है कि एक स्पेशल सीजन में कभी सरफेस का जो फीड है, नेचुरल फीड है, वो ज्यादा अवेलेबल हो। तो उस टाइम में क्या होता है, हमारी जो सरफेस फीड की मछली है, सरफेस फीडर मछली है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो जो उसका स्टिपुलेटेड टाइम है 8 मंथ 12 मंथ, उससे पहले ही उसका ग्रोथ हो जाता है, और उसको हम निकाल लेते हैं अपने तालाब से और सेल कर देते हैं या अपने कंजम्पशन में ले लेते हैं। तो वो यूज हो गई, टेबल साइज की जब हो गई, तो हमारी जो रेस्ट ऑफ फिशेस है, मछलियां हैं, उनके लिए स्पेस अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और फीड अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, जो हमारे ऑक्सीजन या पीएच और जो सुटेबल पैरामीटर्स हैं वो थोड़ा कंड्यूसिव हो जाते हैं और मछलियां हमारी स्मूथली रह लेती हैं।
1: तो दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू कार्यक्रम में हमें पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत कुछ सीखा और हमने डॉक्टर मिश्रा से इंटरेस्टिंग बातें सुनी। ये सब सुनकर हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर मछलियों के जीवन को सेफ और खुशहाल बना सकेंगे। मैं हूँ जुलेखा टोपीवाला, अगली प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर से। थैंक यू।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: लेरिम किसान वाणी का कृषि विधान केंद्र पोम्पोली का डॉक्टर विजय मिश्रा तांबा न्याजु चांगपो पोदुक छुचे कया कया कादर याको सोनम इजिकोर हिंदी का कमेरा सोचे सनामर बिनामशल कंडिन जोगन जुले का टोपी वाला इमर उस लेरिम सो आकाशवाणी ईटानगर रिले याजुसो सनामर उस आकाशवाणी टाउन इमर लंगे नुब्दुक छुचे क्रोनिक कर्मा खिलीची लगती होनी द देश नुप्तिक लेरिम से राजी को जोतुर लंगे नाम उजोना देश नुप्तिक लेरिम डेटे निंग सुजे को सना सा द सिटिक युग सुजे क्रोनिक कर्मा खिलीची निश्चे लेरिम जरो का सुजे क्रोनिक कर्मा खेने प्लीचे येदुन लेरिमा तवंग कुनपक लमा लुंगदन नुर्वो शकन सिक्रिसो नांगपक येदुन समेतों इमुर।

मेरे में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और 7.104 मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:37 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओ, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो आए श्रोताओं, पहले आपको आज की शाम प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:44 पर मनपा कार्यक्रम शेदुन लिरिम में सुन पाएंगे स्वर्गीय लामा लुंगता नोरबू और साथियों द्वारा शेदुन नांगपक। आज शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। शाम 7:10 पर कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता। आज शाम 7:11 पर साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक। इसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे किशोर कुमार संग अन्य गायकों के गाये फिल्म फिर वही रात से एक गीत, फिल्म शोले से एक गीत, आपकी कसम फिल्म से एक गीत, बरसात की एक रात फिल्म से एक गीत, अवतार फिल्म से एक गीत और फिल्म सिलसिला से एक गीत। शाम 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत कार्यक्रम में आज आप सुन पाएंगे समीर के संगीत पर फिल्म धस से एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8 बजे आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आनंद ले पाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 8:09। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 9 अक्टूबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाना की तरह हमारा सभा आरंभ होगा कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात। कल दोपहर 3:33 पर महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कल दोपहर 3:50 पर आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजिरी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल आप आनंद ले पाएंगे फिल्म ब्रह्मास्त्र से अरिजीत सिंह, दिल्ली 6 फिल्म से मोहित चौहान, शेरशाह फिल्म से जुबेन नौटियाल और आशीष कौर, बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म से अखिल सचदेव और मनशील गुजराल, फिल्म कबीर सिंह से सचेत तांडोन, दिल तो बच्चा है जी फिल्म से मोहित चौहान, हाईवे फिल्म से एआर रहमान, दोस्ताना फिल्म से विशाल दत्तलानी, माय नेम इज खान फिल्म से अदनान सामी, शंकर महादेवन, शंकर एहसान

अभय और श्रेया घोषाल और फिल्म जरा हटके जरा बचके से अरिजीत सिंह और सचिन जिगर की आवाजों में चंद फिल्मी नगमे। कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5:23 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। शाम 5:35 पर कार्यक्रम कुंसिल। कल शाम 6:00 कार्यक्रम लिमसेरा। 6:10 पर कार्यक्रम जरुखा। कल शाम 6:20 पर मनपा कार्यक्रम जदुन लेरम। इसके अंतर्गत कल आप सुन पाएंगे पीएम श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुंसे के सुखशीत सिंह सोमू और साथियों द्वारा जेदन क्यूंचक सुम्पा गंगलोमा डोलमा खोर्चे गलवे शप्तन सेमे युन्तन मलमे मल्लम और गोबा मल्लम। कल शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:10 पर कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता। शाम 7:11 पर साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण। इसके अंतर्गत कल आप आनंद ले पाएंगे फिल्म छिछोरे से तुषार जोशी, राजनीति फिल्म से मोहित चौहान और अंतरा मित्रा, ट्यूबलेट फिल्म से अतिप असलम, बॉडीगार्ड फिल्म से ऐश किंग और क्लिंटन सरजो, याराना फिल्म से अरिजीत सिंह, फिल्म किस्मत कनेक्शन से अतिप असलम और अलका याग्निक और फिल्म शहजादा से शश्वत सिंह और शर्मली खोलगाडे की आवाजों में चंद फिल्मी नगमे। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमे तराने। रात्रि 8:00 कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्में गीत में आनंद लीजिएगा। आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे का। कल रात 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोसिस्किन। तत्पश्चात समाचार 8:45 पर तथा न्यूज 8 रात्रि 9:00। तो श्रोता ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसी के साथ कार्यक्रम जरुखा अब यहीं पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:44 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे मनपा में। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
0: परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कार्यवास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत की विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
3: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्न

0: ओपनिंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष 863 अरब डॉलर का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं की नेतृत्व वाली सामूहिक भागीदारी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. GST Council has removed power of arrest of tax officers and the Council has raised the threshold for prosecution from 1 crore rupees to 5 crore rupees. The punishment, whether fine or imprisonment or both, has been left to judicial discretion in every case. A taxpayer who files late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery, interest and proportionate penalty. Addressing media following the GST Council meeting in New Delhi this evening, Finance Minister said the Council recommended removing arrest powers under GST and raising the prosecution threshold. Finance Minister said no rate changes has been made in GST Council meeting and the rate structure is settled.
3: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
2: Prime Minister Narendra Modi has said India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He said the India Mobile Congress has played an important role in the country's progress in the telecom sector and digital connectivity. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. Emphasizing the critical importance of telecom and digital technology, Mr. Modi stressed that phone and network security

0: must remain a priority. He also highlighted the growing challenges of deep fakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat.
1: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है ये भी हम देख रहे हैं इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें सरकारें टेक्नोलॉजी कंपनीज टेलीकॉम ऑपरेटर्स सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाए जो ऐसे फ्रॉड को
0: Electronics and IT Minister Ashwin Vaishnav has said a consultation paper on the future regulation of artificial intelligence will be floated within the next month. Speaking to media after releasing the World Development Report 2026, the promise of artificial intelligence today, Mr. Vaishnav said that the proposed consultation paper will focus on AI safety, cyber security benefits and potential harms. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India recorded exports worth $863 billion last year and aims to achieve $1 trillion in exports this year. The minister said this while addressing the curtain raiser of the 31st CII Partnership Summit in New Delhi today. The summit will be held in Visakhapatnam on the 12th and 13th of next month. Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan today called upon young Indians to harness their skills, creativity and innovative potential to contribute to the vision of Viksit Bharat by 2047. The minister was addressing students and learners at an institute in Noida today. 42 former judges have written an open letter to the people of India expressing concern over attempts to undermine the Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. They wrote that the Election Commission stands at the centre of this and even the higher judiciary and statutory agencies have not been spared. The letter expressed concern that India's constitutional bodies are under sustained attack. They allege that this is a campaign driven by vested political interest with little regard for potentially devastating consequences of destabilizing the world's largest democracy. The nation is celebrating the 94th anniversary of the Indian Air Force today. Addressing the gathering at Hindon Air Base in Ghaziabad, on the occasion Air Chief Marshal A.P. Singh recalled the IAF's combat operations during Operation Sindoor. He said that the country saw firsthand the destructive power as well as the effective air defense operations of the Air Force during the operation. The 2026 Nobel Prize in Literature has been awarded to Canadian poet and essayist Anne Carson. Making the announcement, the Swedish Academy in Stockholm said the author has been honored for a bold and inventive oeuvre that in playful dialogue with the classical tradition which created a new forms for contemporary literature. And that is the end of this news bulletin.
2: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हो गए हैं। लीजिए श्रोता प्रस्तुत है कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता। इसमें आज आप सुनिए एलियस स्कूलर्स होम के छात्र डंडुबामो दमगे से हिंदी में एक कविता। कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
3: नमस्ते, मेरा नाम डंडुबामो दमगे है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम है एलडी स्कॉलर्स होम। मेरा कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता का रचनाकार है हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रागों में साहस बढ़ता है, चढ़ कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, टुकिया सिंधु में गोताखोर लगता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं साहस मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना इतिहास इसी हैरानी में, मिट्टी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। क्या कभी रह गई देखो।

0: सुधार करो। जब तक ना सफल हो नदी चेन को क्या तुम, संदेश का मैदान छा कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जे जा कर नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।
1: श्रोता, अभी आपने कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत एलडी स्कूलर्स होम के छात्र डुंडुबम्मू दमगी से हिंदी में एक कविता सुना। कविता का शीर्षक था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:12 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, पेशे साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक। आज इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे किशोर कुमार संग अन्य गायकों के गाए चंद फिल्मी नगमे। तो आइए श्रोता, कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म फिर वही रात से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के आवाजों में। इस गीत को बोल दिया है मशरूर सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

आदि बर्मन के संगीत पर श्रोता भी अपने फिल्म शोले से किशोर कुमार और माना दे की आवाजों में गीत का आनंद लिया। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म आपकी कसम से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत के रचयिता है आदि बर्मन और संगीत दिया है आनंद बख्शी ने।

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
4: आनंद बख्शी के रचे गीत पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म बरसात की एक रात से। इस गीत के गायक है किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

श्रोता, अभी आपने आनंद बख्शी के गीत पर फिल्म अवतार से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में गीत का आनंद लिया। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में अंतिम गीत फिल्म सिलसिला से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की ही आवाज में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक भी पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवा केंद्र है। समय शाम के 7:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रदेश समाचार 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50।

प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। 4 दिवसीय यह आयोजन कल शुरू हुआ, जिसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जा रहा है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं के बिना विस्तार। यह थीम डिजिटल नवाचार, अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को और बदलाव दे रखा है। उन्होंने कहा है कि अब देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा है कि पूरे भारत में 5G कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाले 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन अब संचालित हो रहे हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का मुख्य फोकस नवाचार और अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक विकास, समावेशी डिजिटल पहुंच तथा सुरक्षित और मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पासीघाट स्थित अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शिक्षण और सीखने के लिए आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए तथा विश्वविद्यालय के मौजूदा 106 एकड़ परिसर का विस्तार किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने आज अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित वंदे मातरम एट 150 के भव्य समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय को विकास के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है। उन्होंने विश्वविद्यालय के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन किया। वंदे मातरम के महत्व पर बोलते हुए श्री रिजिजू ने कहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश में देशभक्ति की भावना जगाने के राष्ट्रगीत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश से वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाया जाना एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करता है। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के पूरा होने के बाद तवांग में मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे एवं पहली बार मतदाता बनने वाले पात्र युवा नागरिकों के नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पद्मश्री से सम्मानित एवं तवांग स्थित मंजूश्री विद्यापीठ के संस्थापक निदेशक लामा थुपतेन फुनसोक ने मोनपा बोली में पात्र नागरिकों से इस महत्वपूर्ण पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। विशेष अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर

0: सुनिश्चित हो। इस बीच निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा पात्र नागरिकों की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के सहायता करने के निर्देश जारी किए गए। वरिष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर निधन हुआ। वे 75 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ हिंदी और मराठी फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र APRC ने आज ईटानगर नगर निगम IMC के स्वच्छता कर्मियों को ईटानगर कैपिटल रीजन में स्वच्छता बनाए रखने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। APRC की प्रभारी अधिकारी और वैज्ञानिक डॉक्टर SD गुरुमाया द्वारा स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित एवं स्वच्छता और साफ सफाई बनाए रखने में स्वच्छता कर्मियों के योगदान को रेखांकित करता है। पासीघाट स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में आज प्रोफेसर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ IQAC के सहयोग से किया। इस व्याख्यान श्रृंखला ने विद्यार्थियों, शोधार्थियों और संकाय सदस्यों को समकालीन हिंदी कविता से जुड़ने के लिए एक समृद्ध अकादमिक मंच प्रदान किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से समकालीन हिंदी कविता की उभरती प्रवृत्तियों, हाशिए की आवाजों और आलोचनात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। और सेवा संकल्प उत्सव के तहत अपर सुबनसिरी जिला प्रशासन ने दापोरिजो में BJP जिला युवा मोर्चा के समन्वय से आउटडोर स्टेडियम में 6 पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की। कार्यक्रम में भाग लेते हुए दापोरिजो विधायक तान्या सोकी ने व्यक्ति और समाज के विकास में खेलों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने और उन्हें संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि एशियाई खेलों में जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में शामिल करने के लिए स्थानीय खेलों पर विचार किया जाना चाहिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani Itanagar, the news read by Prem Sharma. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi. The four-day event, which began yesterday, showcases India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said that India Mobile Congress platform has witnessed the evolution of the telecom sector and digital connectivity in India. He said that 5G connectivity has now reached every district of the country. Mr. Modi added that there are now more than 5,50,000 base stations operating 5G connectivity across India. India Mobile Congress focuses on innovation and next-generation digital infrastructure, technology-led economic growth, inclusive digital access, and development of secure and resilient digital ecosystems. Union Minister for Parliamentary Affairs and Minority Affairs Kiran Rijiju has said that Arunachal Pradesh University at Pasighat should have modern facilities for teaching and learning and that its present 106-acre campus needs to be expanded. Addressing the grand celebration of Vande Mataram at 150 at Arunachal Pradesh University today, Rijiju said, "A university needs adequate space to grow and assured that he would extend all possible support for the development of the university." Speaking on the significance of Vande Mataram, Rijiju said the national song played an important role in awakening the spirit of patriotism during India's freedom movement. He said celebrating its 150th anniversary from Arunachal Pradesh reflects the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat. Following the completion of the special intensive revision of electoral rolls, a special drive for the enrollment of left-out and first-time young eligible electors is being conducted in Tawang. Padma Shri awardee Van Lama Thupten Phunsok, founder director of Manjushri Vidyapith Tawang, has appealed to eligible citizens in the Mompa dialect to actively participate in this important

श्रोता, अभी आपने देशभक्ति गीत का कार्यक्रम में फिल्म दस से समीर के संगीत पर एक गीत सुना। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। तो आए श्रोता, कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं फिल्म एक रिश्ता से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत को बोल दिया है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। गीत की फरमाइश की है वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवंश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप ने।

राम तेरी कितने नाम फिल्म से आए सुनते हैं कार्यक्रम में अगली गीत आरती मुखर्जी के आवास में। इस गीत को बोल दिए है गुलशन बवरा ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। गीत की फरमाइश की है रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने।

कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनते हैं रविन्द्र जैन के संगीत पर फिल्म फकीरा से लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत की फरमाइश की है मेरठ कंठ से दिग्दर्शन शाह गौर, कविता गौर, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन बाई ने।

आयशोत, आप सुनते हैं कार्यक्रम में अंतिम फरमाइश का गीत फिल्म गीत गया पत्थरों ने से आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को बोल दिए है हसरत जयपुरे ने और संगीत दिया है रामलाल ने। गीत की फरमाइश की है तरोवल नवन शहर पंजाब से गंगदीप ठंडी, तृप्ता कुमारी ठंडी, डॉक्टर प्रियंका ठंडी, डॉक्टर प्रशांत ठंडी, डॉक्टर प्रियम ठंडी, बेबी वमिका और वानी ठंडी ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के वत्सफरमर्श पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस रो की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक वत्सअप जरूर करें। हमारा वत्सअप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइश पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादोबारा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 मिनट होने वाले हैं। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स के रात्रि 8:30 मिनट पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 मिनट पर तथा म्यूजिक 9 रात्रि 9 बजे। कृपया कुछ पलों की

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जापान में होने वाले एशियाई पैरा खेलों से पहले भारतीय दल को आज औपचारिक विदाई दी गई। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय दल की नई जर्सी का अनावरण किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल रांची में खेला जाएगा और प्रसार भारती तथा इन डॉट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसान क्रिकेट लीग आयोजित करने की घोषणा की।

0: तो कार्यक्रम को आज शुरू किया जाए बैडमिंटन की खबर के साथ, जहां दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की रिको गुंजी को हराया। हालांकि तन्वी शर्मा को महिला सिंगल्स और थरुण मन्नेपल्ली को पुरुष सिंगल्स के अपने मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स जोड़ी कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय का मुकाबला अब से कुछ देर में इंग्लैंड के ओलिवर बटलर और सैमुअल जोन्स से होगा।
1: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने दूसरे राउंड ऑफ 16 मुकाबले में जापान के रिको गुंजी को 21-15 21-15 से हराया। मैच की शुरुआत से ही सिंधु ने दबाव बनाए रखा और दोनों ही सेट में गुंजी को वापसी का मौका ना देते हुए जीत दर्ज की। अब सिंधु का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त और पूर्व विश्व चैंपियन थाईलैंड की रजनोक इंथानोन से होगा। सिंधु ने हाल ही में जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट जीता था। थारुण मन्नेपल्ली और तन्वी शर्मा के लिए ये निराशजनक रहा, जिन्हें सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी वरीयता प्राप्त फ्रांस के क्रिस्टो प्रोपोव ने मन्नेपल्ली को 21-14 21-19 से हराया, जबकि रथचानोक ने तन्वी को एक तरफा मुकाबलों में 21-18 21-7 से मात दी। पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत भी कनाडा के ब्रायन यांग से 21-15 15-21 13-21 से हार कर पहले ही दौर में टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इससे पहले HS प्रणय, उन्नति हुड्डा, अश्मिता चालिया और मल्लविका भंसौर भी शुरुआती दौर में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। HS प्रणय को डेनमार्क एंडर्स एंटोनसेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं उन्नति चीन की हान कियान शी से हार गई, जबकि अश्मिता डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से कड़े 3 के मुकाबले में हार गई। मालविका स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर से सीधे गेम में हार गई। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
0: तो पीवी सिंधु ने अपने आगे की राह पक्की कर ली है और अब से कुछ देर बाद कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की पुरुष डबल्स जोड़ी भी अपना मुकाबला खेलेगी, जिनके सामने इंग्लैंड की ओलिवर

0: बटलर और सैमुअल जोन्स होंगे, तो देखना होगा कि क्या भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय कर पाती है या नहीं। और अब कार्यक्रम में बात जापान के आइची नगोया में होने वाले एशियाई पैरा खेलों की। इन खेलों से पहले आज भारतीय दल को औपचारिक विदाई दी गई। इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय पैरालंपिक समिति द्वारा आयोजित इस समारोह में भारतीय दल की नई जर्सी का अनावरण किया। श्री मांडविया ने चुनौतियों को पार करने वाले पैरा खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों ने जीवन की यात्रा पहले ही जीत ली है और अब इन्हें पदक की यात्रा जीतनी है।
1: हमारे पैरा एथलीट जापान में एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। हमने उसका हौसला भी बढ़ाया, उसको प्रोत्साहित भी करा। और पैरा एथलीट वे युवा है जो अपने जीवन को तो जीत गया है। ये छोटी बात नहीं है, अपना परिवार का विश्वास जीतना, सभी चैलेंज को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना, स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करना, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए जाना। जीवन की यात्रा को तो आप जीते हैं, लेकिन आपको मेडल की यात्रा को भी फतेह करना है। मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ।
0: समारोह में खेल मंत्री ने कहा कि सरकार अपनी तमाम नीतियों द्वारा खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: लास्ट एशियन गेम्स में हम 111 तक पहुँचे, हमें और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए जज्बा चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। हमारे देश के एथलीट को, चाहे वो पैरा एथलीट हो चाहे वो एथलीट हो, उसको संसाधन की कोई कमी नहीं है। सरकार की ओर से, फेडरेशन की ओर से, ओलंपिक्स एसोसिएशन की ओर से जो भी सहयोग की आवश्यकता हो उसको सहयोग उपलब्ध हो रहा है। आर्थिक रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, खेलो इंडिया एथलीट के रूप में, टॉप्स के एथलीट के रूप में सरकार आपके साथ खड़ी रहती है।
0: श्री मांडविया ने कहा कि भारत एक युवा राष्ट्र है और देश के युवा इसे विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी जब पोडियम पर खड़े होते हैं तो पूरे देश को खुशी होती है।
1: दुनिया का सबसे युवा देश आज हमारा भारत है। 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को मेडल में कन्वर्ट करना, इनोवेशन में कन्वर्ट करना, सफलता में कन्वर्ट करना, सशक्तिकरण में कन्वर्ट करना, ये मोदी सरकार का मंत्र है। और होलिस्टिक अप्रोच के साथ मोदी जी आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स में कैसे आगे बढ़े, पहलू को टच करते हुए आज हमारा भारत बदल रहा है, नया भारत बन रहा है, विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे एथलीट जब पोडियम पर खड़े होते हैं, पोडियम को फिनिश करते हैं, दोस्तों सफलता हमारे नजदीक आती जा रही है।
0: तो भारतीय दल अब तैयार है इस चुनौती को पार करने के लिए। इस अवसर पर भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया, चेयरपर्सन पायल कनोडिया और मुख्य कोच सत्य नारायण समेत कई बड़े खिलाड़ी मौजूद रहे। और भारतीय टीम के इस अभियान पर और अधिक जानकारी लेकर के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष भारत का जो ये अभियान है। पहले एशियन गेम्स समाप्त हो चुके हैं और अब बारी पैरा खिलाड़ियों की है कि वो किस तरह पोडियम पे कितना अधिक मौकों पर भारतीय तिरंगे को गुंजायमान करते हैं। तो कह सकते हैं कि भारत को अपने किन किन खिलाड़ियों से उम्मीदें होंगी और किस तरह की अभियान की उम्मीद है।
2: शक्ति, भारत का 121 सदस्यीय दल रवाना हो चुका है। 80 पुरुष खिलाड़ी और 41 महिला खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं। एथलेटिक्स पे सबसे ज्यादा 44 खिलाड़ी हैं। अगर बात करें कि इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर, तो प्रमोद भगत और भाविना पटेल जो फ्लैग बेरर हैं इंडिया के, तो उन पर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी, क्योंकि प्रमोद भगत एक बार पैरालंपिक्स में भी गोल्ड जीत चुके हैं और 4 गोल्ड और 2 एशियन गेम्स मेडल भी उनके नाम पे हैं। अगर सुमित अंटिल की बात करें तो 2 बार गोल्ड उन्होंने भी जीता है पैरालंपिक्स में। और अवनी लेखरा जो पहली भारतीय महिला बनी थी 2 गोल्ड जीतने वाली, तो उन पर भी काफी निगाहें होंगी। साथ ही साथ शीतल देवी का भी प्रदर्शन जो है देखने लायक होगा कि किस तरीके से वो भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी।
0: जी बिल्कुल, आपने काफी बड़े और दिग्गज खिलाड़ियों के नाम गिनाए जिनसे भारत को बिल्कुल उम्मीद होगी। और 18 अक्टूबर से ही आयोजन शुरू होगा, 24 तारीख तक चलेगा। जब 2024 के ओलंपिक्स खत्म हुए उसके बाद जब पैरालंपिक्स की बारी आई तो भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने वहां पे नए कीर्तिमान बनाए। और एक लगातार हमने क्रम देखा है जहां पे खेलों के आयोजन के बाद जब पैरा खेलों की बारी आती है तो भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हैं, नए कीर्तिमान बनाते हैं, हमने पैरालंपिक्स में देखा है। और अब इस बार कितनी उम्मीद होगी, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने एक तरफ 85 पदक जीत के अपना काम किया है, अब बारी पैरा खिलाड़ियों की है जो 100 के आंकड़े की उम्मीद थी, क्या इस बार पार होती हुई नजर आएगी।
2: बिल्कुल शक्ति, भारतीय खिलाड़ियों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। आपने जिक्र किया पैरा ओलंपिक्स का, तो मैं कहना चाहूंगा कि एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स

0: 2023 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जहां भारतीय एशियन गेम्स में 106 मेडल जीते थे और पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल अपने नाम किए थे। तो पैरा एशियन गेम्स में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा था, वहीं पैरालंपिक्स की भी आपने बात करी तो वो भी प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। इस बार 121 खिलाड़ी जो है पैरालंपिक पैरा एशियन गेम्स में जा रहे हैं, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि 100 मेडल का आंकड़ा जो एशियन गेम्स में पूरा नहीं हो पाया तो क्या पैरा एशियन गेम्स में हो पाएगा, सभी को यही उम्मीद है।
1: जी बिल्कुल, लेकिन हम अभी जब श्री मनसुख मांडविया जी को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि पिछले बार हमने 111 पदक जीते थे, लेकिन इस बार क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि दल की संख्या भी अगर देखी जाए तो पिछले बार भारत ने एक बेहद बड़ा दल भेजा था, लेकिन इस बार उसकी तुलना में थोड़ी सी कटौती खिलाड़ियों में हुई है।
0: बिल्कुल शक्ति, पिछली बार भारत का जो दल था पैरा एशियन गेम्स में वो 303 सदस्यों का था, जहां भारत ने 111 मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल थे। इस बार वो दल सिर्फ 121 सदस्यों का है, जिसमें 80 पुरुष, 41 महिलाएं खेलेंगी। और एथलेटिक्स से भारत को सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी, क्योंकि एशियन गेम्स में भी हम लोगों ने सबसे ज्यादा मेडल्स जो है एथलेटिक्स में ही जीते, तो 44 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे पैरा एशियन गेम्स में, और बहुत सारी उम्मीदों को लेकर भारत का जो है परचम लहराने का प्रयास करेंगे।
1: जी बिल्कुल, खिलाड़ियों से उम्मीद होगी कि इस तरह की एथलीट्स ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भारत के लिए एक पदकों की झड़ी लगाते हुए नजर आएंगे, जैसा हमने पिछले कई बड़े आयोजनों से, जिसमें पुराने पैरा एशियन गेम्स हो, पुराने पैरालंपिक्स हो, देखा है। इस बार भी भारतीय दल तैयार है जापान की इस चुनौती को एक बड़े कीर्तिमान के साथ समाप्त करने के लिए। और अब कार्यक्रम में बात क्रिकेट के मैदान की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल खेला जाएगा। ये मैच रांची के JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। विशेष, भारत ने पहले मैच में एक शानदार जीत दर्ज की थी 8 विकेट से, और अब श्रृंखला के पहले मैच को जीत करके बढ़त जो है 1-0 की है। कल भारत के लिए कैसी स्थितियां होंगी रांची में और किन खिलाड़ियों पर नजर रहने वाली है?
0: शक्ति, भारतीय बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमें देखने को मिला कि बल्लेबाजी के दम पर एक तरफा मुकाबला भारत ने अपने नाम कर लिया, लेकिन गेंदबाजी की भी तारीफ होगी, क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ जब भारतीय गेंदबाजों ने अपना प्रदर्शन शुरू किया तो 44 रन पर 3 विकेट झटक लिए थे, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने वापसी करते हुए स्कोर को 171 तक पहुंचा दिया। उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करी। हालांकि जब से श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी की कमान संभाली है तब से बल्लेबाजी के परफॉर्मेंस में उनका थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस पारी से उन्होंने बताया है अपने आलोचकों को कि उनकी क्या क्वालिटी है।
1: जी बिल्कुल, एक क्वालिटी खिलाड़ी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो क्लास और आक्रामकता का एक अनूठा समागम देखने को मिलता है उनकी बल्लेबाजी में। कल ऐसी भी उम्मीदें होंगी कि वैभव सूर्यवंशी भी भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। वैभव या फिर लोकल बॉय शान किशन, क्या उम्मीदें होंगी इन दो खिलाड़ियों से खासकर?
0: शक्ति, दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और ईशान किशन की फॉर्म की अगर बात करें तो पिछले 1-2 सालों से उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता है, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से लेकर उसके बाद आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस, T20 विश्व कप जिताना भारत को और अहम मौकों पर परफॉर्म करना, ये ईशान किशन की पहचान बन चुकी है। वहीं युवा वैभव सूर्यवंशी ने भी U19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था भारत के लिए, और अब वो अपने मौके तलाश रहे हैं टीम में। क्या टीम कुछ अलग कॉम्बिनेशन करते हुए वैभव सूर्यवंशी को मौका दे सकती है? यदि देती है तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी प्रेशर में परफॉर्म करते हैं।
1: जी बिल्कुल, देखना होगा कि किस तरह से अपने आप को एक मैच्योर खिलाड़ी की तरह स्थापित करने का काम करते हैं इस समय। एक और अपडेट आया क्रिकेट के मैदान से, जहां श्रीलंका के टेस्ट कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने आज टेस्ट कप्तानी छोड़ दी है। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने कुशल मेंडिस को उनकी जगह पे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। प्रसार भारती और इन डॉट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने आज किसान क्रिकेट लीग KCL के आयोजन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों से क्रिकेट खिलाड़ियों और गायकों की खोज करना है। लीग के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लीग का आयोजन अगले वर्ष फरवरी में होगा और इसमें भाग लेने के लिए पंजीकरण अगले 2-3 सप्ताह में शुरू हो जाएगा।
2: Kisan Cricket League is a nationwide cricket league focused on only the rural people or youngsters who have cricket as their career choice. So we will be doing a nationwide talent hunt in which we will be inviting more than 1 lakh players who will be then analyzed by our coaches. They will be brought to the physical trials and then 140 players will be chosen out of. Each player will be provided initial package of 5 lakh rupees for the league.
1: तो एक और मंच क्रिकेट का तैयार होता हुआ, खासकर इस बार फोकस है ग्रामीण क्षेत्र।

0: सत्रों पे रूरल एरिया पर। 15 ओवर का फॉर्मेट होगा, वाइड बॉल क्रिकेट होगी, जहां पहले सत्र में 45 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें देश भर से 60 टीमें, 140 खिलाड़ी और 30 गायक शामिल होंगे। श्री पांडे ने कहा कि ये पहल दर्शकों को मुफ्त और पारिवारिक मनोरंजन प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
1: I think it is one of the progressive step in the right direction because being a public service broadcaster, Prasar Bharati caters people. One, it comes free of cost. So you don't have to take any subscription to watch live matches. That is a very big thing.
0: तो एक अनूठा संगम जहां मनोरंजन और क्रिकेट एक साथ देखने को मिलेगा। और अब चलते चलते रुक कर लेते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी का आयोजन जलंधर और मोहाली में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को 6 टीमों के टूर्नामेंट में स्थान दिया गया है। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा जापान, चीन, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और अब बांग्लादेश की टीम भाग लेगी। पंजाब में लगभग 2 दशक बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की वापसी होने जा रही है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
3: The council recommended removing arrest powers under GST.
4: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
3: From 25,000 to ₹10,000.
2: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
3: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
4: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए की निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
3: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
5: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
2: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
5: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है।

0: ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
1: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
3: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है किस तरह से समाज के उन वर्गों को AI का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है AI का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा ना दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतंत्र

0: तांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में दो दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
1: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
2: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, महानगरपालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
3: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। दो दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश एकेडमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ ₹96.79 पर बंद हुआ।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
5: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं। इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में, लगभग सभी ब्लॉक्स में, 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
0: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स

0: फाइनल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुरगन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees, no changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says, growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential, calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within next month to ensure AI safety and tackle deepfakes, announces Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in the national capital this evening.
2: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crores and reducing the general penalty from 25,000 to rupees 10,000.
1: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST Council has recommended common standards for notices and proceedings.
2: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
1: Ms. Sitharaman said the council has also taken steps to facilitate the smoother movement of goods. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that strengthening the security framework has become essential in view of the growing importance of telecom and digital technology. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today.
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन